फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं।

0: de chinten.
1: काल में सेवा शब्द का जितना दुरुपयोग हुआ है और होता है उतना कभी नहीं हुआ। सेवा का मौका देने की बात करते हैं, सरकार का चुनाव हो, शिक्षा संस्थानों में छात्र संघ के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के चुनावों में सेवा शब्द का बोलबाला रहता है। उम्मीदवार आपसे सेवा का एक मौका चाहते हैं। कम चतुर उम्मीदवार कहता है, मुझे सेवा करने का एक मौका दीजिए, और अधिक चतुर उम्मीदवार कहेगा, सेवा का मौका दें। मात्र इतना कहने से यह समझ में नहीं आता कि उम्मीदवार अपनी सेवा करने का मौका चाह रहा है या जिस व्यक्ति से वोट मांग रहा है उसकी सेवा करने का। और यह तो जग जाहिर ही है कि इस प्रकार की सेवा के मौके की मांग करने वाले लोग अधिकांशतः अपनी ही सेवा करते हैं। जितनी सहजता से मुख से उच्चारित होता है उसको कार्य रूप में उतारना उतना ही कठिन है। दास तो यहां तक कह देते हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा, अर्थात सबसे कठोर यदि कोई बात है तो वह है सेवक धर्म। सेवा भावी संस्थाएं जानती हैं कि सेवा कार्यों का संचालन कैसा कठिन होता है। सेवा में साधन जुटाने की कठिनाई को मैं गौण मानता हूं। दो बातों की है, सेवा करने वाले व्यक्ति का निरुत्साहित हो जाना और दूसरी है उसके उत्साह का अतिरेक हो जाना। पहली स्थिति तब आती है जब हमारी सेवा का कोई ठोस प्रतिफल होता नहीं दिखाई देता तथा जब हम देखते हैं कि हमें प्रशंसा के बदले उपेक्षा मिल रही है। तब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और स्वयं सेवक दल का सदस्य था। हम लोग प्रति रविवार को लगभग 5 मील दूर एक गांव को जाते और वहां लगभग 3 घंटे तक गांव की सफाई करते, कचरा इकट्ठा कर एक गड्ढे में डालते, गांव वालों को गांव कैसे साफ रखना तथा कचरे की खाद कैसे बनाना यह सब सिखाते तथा उन्हें स्वास्थ्य रक्षण संबंधी मोटी मोटी बातें बतलाते। फिर दशहरा दिवाली की छुट्टी हो गई तो 5 रविवार हम लोगों का उस गांव में जाना नहीं हुआ। छुट्टी के बाद जब कॉलेज खुला और 5 सप्ताह बाद 6 रविवार को हम लोग उस गांव में गए तो सर्वत्र गंदगी का आलम देख हम लोग चकरा गए। गांव के लोगों से जरा डांट के स्वर में गंदगी का कारण पूछा तो जो उत्तर मिला उसने हम लोगों को और भी विस्मित तो किया ही साथ ही निरुत्साहित भी कर दिया। वे बोले, बाबू साहब, हम लोग तो इतने दिन आपका ही रास्ता देख रहे थे, आप लोग तो 5 इतवार आए ही नहीं। अब हम लोग गांव की सफाई करने जाते थे या कि गांव वालों को गांव की सफाई सिखाने? जिनकी सेवा की जाए उनका ऐसा रुख देख सेवा करने वालों का दिल बैठ जाता है। प्रशंसा मिलना तो दूर, उपेक्षा मिलती है। ऐसे समय सेवा करने वाले को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दृष्टांत ध्यान में ले आना चाहिए। वे अपनी दयालुता, परोपकार और सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे कहा, अमुक व्यक्ति आपको बहुत बुरा भला कह रहा था। ये सोचकर विद्यासागर बोले, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने उसका कोई भला किया है। अर्थात जिसका भी उन्होंने भला किया उसी ने उनकी निंदा की, उन्हें गालियां दी, पर उनकी दयालुता में कमी न आई। सेवा में दूसरी बाधा है सेवा करने वाले के उत्साह का अतिरेक। जब वह ऐसा सोचने लगता है कि वह अपने सेवा कार्यों द्वारा समाज को बदल डालेगा, चाहिए कि समाज को एकदम बदला नहीं जा सकता। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा, महाराज आपकी वाणी में अद्भुत शक्ति है, जादू है, बिजली है, आप भारत का दौरा कर सर्वत्र व्याख्यान देकर देश को सीधा कर डालिए। स्वामी जी हंसकर बोले, अरे यह दुनिया तो कुत्ते की पूंछ है, इसे भला कौन सीधा कर सकता है। वह व्यक्ति अपने को अपमानित अनुभव कर कुछ रुष्ट हो बोला, जब आप मानते हैं कि दुनिया कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है तब आप इतने आश्रम क्यों बना रहे हैं? लोगों का जनता जनार्दन की सेवा के लिए आह्वान कर रहे हैं। स्वामी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इसलिए कि ऐसा करने से वे स्वयं सीधे हो जाएंगे। अद्भुत दृष्टि है। हमें स्मरण रखना होगा कि हमारी सेवा से समाज सीधा नहीं होगा, हम स्वयं सीधे होंगे। यदि ये दो उदाहरण हम अपने सामने रखकर सेवा के क्षेत्र में उतरेंगे तो हमारी सेवा सचमुच में फलवती बनेगी और हमें निरुत्साह का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे चिंतन। सुबह के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: 90. अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना भी आप सुन रहे थे। सुबह के 6:30 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं उदित नारायण नगाइच।
2: मिट्टी परीक्षण इसलिए आवश्यकता होता है कि हमें को पता होना चाहिए हमारी जो कृषि कर रहे हैं जिस भूमि में, उसमें हमारी भूमि का उर्वरता स्तर क्या है, उच्च है, मध्यम है या निम्न है। तो इसके लिए हमें पता लगाने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत आवश्यक रहता है। तो मिट्टी परीक्षण के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी नमूना का संग्रहण करेंगे, मिट्टी नमूना एकत्रित करेंगे। तो मिट्टी नमूना एकत्र करने की जो विधि है, हमको जिस खेत का मिट्टी नमूना एकत्रित करना है उसमें

0: में हम लोग को सबसे पहले जो ऊपर में फसल का जो जड़ रहेगा, कुछ अपसेट रहेगा, उसको हटाना है। और अगर रहेगा अगर की सहायता से, या फिर हमारा राफा फावड़ा बोलते हैं, उसके माध्यम से हम भूमि को गड्ढा करते हैं, तो इसमें हम अंग्रेजी के वी आकार का निशान बना लेते हैं। जब अंग्रेजी का वी आकार का गड्ढा हमारा बन जाएगा, तो ऊपर से लेके नीचे तक वो खुरपी की सहायता से हमको 6 इंच से 9 इंच तक का पूरा मिट्टी लेना, ऊपर से लेकर के हमको प्रत्येक जगह से लगभग 500 ग्राम मिट्टी एकत्र करना। अब यदि हम एक एकड़ खेत से हमें मिट्टी नमूना लेना है, तो हमको प्रत्येक जो खेत है उसके चार कोनर पे लगभग जो हमारे खेत का जो मेड़ है उसको हमें 10 से 15 फीट तक छोड़ना, अंदर से नमूना लेना है। तो प्रत्येक चार कोनर से नमूना लेना और एक नमूना बीच से लेना। तो एक तरीके से हमको एक एकड़ से 5 मिट्टी नमूना एकत्रित करना है। अब प्रत्येक जगह से हमको लगभग 500 ग्राम मिट्टी लेना है। अब हम उस 500 ग्राम जो मिट्टी रहेगा सभी जगह से एकत्र कर लेंगे। उस मिट्टी में हम देखेंगे कुछ कंकड़ पत्थर हो या कांच हो या और भी जो जड़ वगैरह हो पौधे की या फसल की, हम उसको निकाल देंगे और उस मिट्टी को अच्छे से कूट लेंगे, उसको भुरभुरा बना लेंगे। उस मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद उसको हम रोटी के आकार में, चपाती के आकार में गोल बना देते हैं। गोल बनाने के बाद अब हम उसको एकदम बराबर बराबर के चार हिस्सों में उसको हम वितरण करेंगे, चार हिस्सों में उसको हम बांटेंगे। चार हिस्सों में उसको बांटने के बाद हमें कोई भी आमने सामने वाले दो हिस्से रखना है और कोई भी आमने सामने वाले दो हिस्सों को हमको निकालना है। वो मिट्टी को हम निकालने के दो हिस्से बचेंगे, फिर हम जो दो हिस्से बचेंगे उसको पुनः अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। पुनः हम जब उसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद हम फिर उसको रोटी या चपाती के आकार में उसको गोल बना देंगे। जो हम लोग पहले समय जो किए थे उसको हम फिर करेंगे, उसको बराबर बराबर चार भागों में बांटेंगे, कोई भी दो हिस्से आमने सामने वाले हटा देंगे, कोई भी दो हिस्से आमने सामने वाले रख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी लगभग जो मिट्टी हमको मिट्टी नमूना के लिए लगभग 400 से 500 ग्राम मिट्टी की आवश्यकता रहती है, हमको 400 से 500 ग्राम मिट्टी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम वो मिट्टी नमूना एकत्रित कर सकते हैं। अब मिट्टी नमूना एकत्र करने के बाद हम जो थैली में मिट्टी को भरेंगे, उस थैली के ऊपर में भी हमको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लिखना पड़ता है। उसमें जैसे किसान का नाम हो गया, बल्दिया, तो उसका ग्राम, जिला और उसका मोबाइल नंबर, तो ये हमें मिट्टी की थैली के ऊपर ये चीजें शुरुआत में महत्वपूर्ण चीजें लिखना। इसके अलावा हमें थैली में प्रत्येक नमूना के अंदर एक पत्रक भी भरना होता है, मिट्टी परीक्षण पत्रक जिसको बोलते हैं। उसमें किसान का पूरा विवरण रहेगा, जैसे किसान का नाम है, उसके ग्राम का नाम, विकास खंड का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड और उसके खेत का प्रकार, मिट्टी का प्रकार, किसान के पास सिंचाई का स्रोत है या नहीं है, किसान उसमें पिछले वर्ष कौन सा फसल लिया था और जो आगामी वर्ष कौन सा फसल लेना चाहता है, और उस फसल का यदि किस्म सहित लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे धान हमको लगाना है तो धान हमको छोटी किस्म का लगाना या मध्यम किस्म का लगाना या बड़ी किस्म है हाइब्रिड धान उसको लगाना, हम यदि उस चीज को लिख देंगे तो आप लोगों को जो उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा आएगी वो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए उसको आकलन करके भेजी जाएगी। तो इस तरीके से हमें फसल का विवरण जरूर देना है अपने मिट्टी नमूना में। अब मिट्टी नमूना लेते समय हमको कुछ सावधानियों की आवश्यकता भी रहेगी। एक तो मिट्टी नमूना हम ऐसे स्थान से ना लें जहां छाया रहती हो, किसी वृक्ष की छाया रहती हो, ऐसे स्थान से हमको मिट्टी नमूना नहीं लेना चाहिए। या जहां किस खेत में किसी भी स्थान पर यदि जल भराव की समस्या रहती है, जहां पानी भरा रहता है, ऐसे स्थान से भी हमको मिट्टी नमूना नहीं लेना। और कभी हम जब गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट कुछ खेत में डाल देते हैं, ढेर लगा देते हैं, तो ऐसे स्थान से भी हमको मिट्टी नमूना नहीं लेना, क्योंकि इससे हमारा परिणाम प्रभावित हो सकता। तो इस तरीके से हमें कुछ सावधानियां भी रखना है मिट्टी नमूना लेते समय। अब इस मिट्टी नमूना को हम क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या हम स्वयं जाकर के जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उसमें हम इसको जमा कर सकते हैं मिट्टी नमूना को जांच के लिए। उसका कुछ निश्चित फीस भी रहेगा, वो फीस उसका हमें पे करना है। और मिट्टी का परीक्षण हम दो तरीके से करा सकते हैं, सामान्य मिट्टी परीक्षण होता है और एक सामान्य सूक्ष्म पोषक तत्व सहित मिट्टी परीक्षण होता है। तो हमको किस प्रकार का मिट्टी परीक्षण करवाना है, यह हमारे किसान भाई बहन स्वयं अपना जांच करवा सकते हैं जिस प्रकार की मिट्टी का करवाना है।
1: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। विविध भारती कार्यक्रम का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारण हम करेंगे सुबह 9 बजे, दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 7:10 पर

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी का अनुप्रसारण किया जाएगा। इस शाम 6:05 पर हम प्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात का अनुप्रसारण किया जाएगा। रामचरितमानस का भाग 7 सुनिएगा सुबह 6:40 पर। देशगान का प्रसारण होगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:30 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मंदर हम लेकर आएंगे सुबह 7:50 पर। सुबह 10:10 का समय होगा सुगम संगीत के प्रसारण का। सुबह 10:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संध्या 5:10 पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। 5:30 का समय होगा चित्रपट संगीत का। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे संध्या 6:20 पर, संध्या 7 बजे, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10 बजे। रात्रि 8:20 पर हम लेकर आएंगे गैर फिल्मी गीत। आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। नन्हे मुन्ने साथी अपना कार्यक्रम बाल सभा सुनेंगे सुबह 8:30 पर। शाम 5 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुन सकेंगे संध्या 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा जायद मूंग उड़द में रस चूसक कीटों से बचाव के उपाय। अन्य नियमित कर्मों के साथ आप सुनेंगे चर्चा संरक्षित खेती से संरक्षित खेती लाएं आर्थिक समृद्धि। ये चर्चा होगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।

0: Akashwadi at 90.
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे इसका भाग 7। कलाकार हैं सविता देवी।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित्र और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का भाग सात। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में देशगान। रचना है विजय लक्ष्मी विजय की।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: सुनोसुर में देश गान अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य सप्ततितमं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटिरूप्यकाणां अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरं अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृतमहोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबंगालस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्रीसुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्डवृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आज सुबह 9 बजे, दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। सुबह 7:10 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। यहीं से शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात का अनुप्रसारण किया जाएगा। चित्रपट संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और शाम 5:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर हम लेकर आएंगे सुबह 7:50 पर। सुगम संगीत सुनेगा सुबह 10:10 पर और सुबह 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संध्या 5:10 का समय होगा भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या का। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे संध्या 6:20 पर, संध्या 7 बजे, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10 बजे। रात्रि 8:20 का समय होगा गैर फिल्मी गीतों के प्रसारण का और रात्रि 10:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यमिनी। बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा हम लेकर आएंगे आज सुबह 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमर गोठ का प्रसारण होगा संध्या 5 बजे। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे संध्या 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा जायद मूंग उड़द में रस चूषक कीटों से बचाव के उपाय। अन्य नियमित क्रमों के साथ आज के चौपाल में आप सुनेंगे चर्चा संरक्षित खेती से लाए आर्थिक समृद्धि। ये चर्चा होगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
3: अरे गोपाल जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से मन प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी।

नमस्कार, रायपुर में अब समय है देश की वाणी आकाशवाणी का। देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिए आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर से की गई बातचीत। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: आवाज का ये सफर 9 दशकों का साथी है, परिवर्तन का साक्षी है। आवाज का ये सफर कामयाबियों का गवाह है, फनकारों का हमनवा है। आवाज का ये सफर कल से आज तक निरंतर जारी है, आकाशवाणी को समर्पित अनेक सृजनकर्ताओं के संग, जिन्होंने रेडियो के कैनवास में भरे हैं कई खूबसूरत रंग। इन्हीं रंगों को अपने साथ लिए जन जन तक पहुंच रही है आकाशवाणी की ध्वनि तरंग। तो देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम बांटने जा रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री विश्वास केलकर के अनुभव, उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: दीपक जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन।
0: विश्वास केलकर जी, ये जो नाम है ये आकाशवाणी के किसी एक केंद्र से नहीं बल्कि अनेक केंद्रों से इस नाम को हमारे श्रोताओं ने सुना है। ये नाम किसी जमाने में आकाशवाणी रायपुर से भी सुनाई देता था। तो विश्वास जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपकी ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है?
1: ये यात्रा शुरुआत कहाँ से हुई, उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं इस यात्रा पर आया कैसे। देखिए, आकाशवाणी में आने से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक के तौर पर कार्य करता था
0: जी।
1: मेरी माताजी श्रीमती कमल केलकर, जो कि रायपुर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग उनको अच्छे से जानते हैं, एक सुप्रसिद्ध गायिका थी
0: जी।
1: तो मेरी माताजी की एक शिष्या थी रमा दीदी। रमा दीदी से मेरी माताजी ने कहा कि मेरे बेटे के लिए कभी कोई अच्छी नौकरी की पोस्ट निकले तो बताना। उन्होंने ये बात उनकी बड़ी बहन रेखा दीदी से कही
0: जी।
1: और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जब यूपीएससी से पोस्ट निकली तो फॉर्म रमा दीदी के माध्यम से मेरी माताजी तक पहुंचा दिया।
0: क्या बात,
1: आप जानते हैं कि रेखा दीदी उस समय आकाशवाणी रायपुर में ही कार्यरत थी। उसके बाद 24 जून 1991 को आकाशवाणी बीकानेर में मैंने कार्यक्रम अधिकारी का पदभार ग्रहण किया और 30/11/2023 को आकाशवाणी भोपाल से सहायक निदेशक कार्यक्रम के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच मैंने नागौर, रीवा, रायपुर, अयोध्या, इंदौर, कोटा और भोपाल जैसे आकाशवाणी केंद्रों पर अपनी सेवाएं दी
0: जी। केलकर साहब, आपने चंद मिनटों में इतनी लंबी यात्रा का वृत्तांत हमारे श्रोताओं को सुनवाया। अब अगर हम आकाशवाणी के प्रति आपकी अपनी रुचि की बात करें तो ये जो रुचि है, इसका सबसे बड़ा आधार क्या रहा है?
1: देखिए, बचपन से ही आकाशवाणी हमारे घर में सुना जाता था। 5-55 से हमारा रेडियो जो है 5-55 से लग जाता था, बल्कि संकेत ध्वनि से हमारा रेडियो हमारे घर शुरू हो जाता था
0: जी।
1: उसमें जो भजन आते थे वो इतने अच्छे आते थे कि मेरे ख्याल से हमारे घर के जितने सदस्य थे सभी उसको सुना करते थे। और उस समय आकाशवाणी रायपुर से, चिंतन रायपुर से नहीं आता था, आकाशवाणी भोपाल से उसका प्रसारण होता था
0: जी।
1: और वो चिंतन हम लोग सुना करते थे, रामचरितमानस होता था उसको भी हम लोग सुना करते थे, और आकाशवाणी रायपुर से शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसको भी हम लोग सुना करते थे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे आकाशवाणी के प्रति मेरी जो है रुचि बढ़ती चली गई। हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि मैंने ये विचार नहीं किया था कि मैं कभी आकाशवाणी में नौकरी भी करूंगा
0: जी।
1: क्योंकि उस समय ऐसी बचपन में ऐसा मालूम ही नहीं था कि आकाशवाणी में नौकरी कैसे करते हैं, क्या कैसे की जाएगी, या मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। मैं तो, क्योंकि मेरे माता पिता जी दोनों गाने वाले थे, मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ करूं।
0: आपने संगीत में क्या क्या सीखा है?
1: संगीत में देखिए, वैसे तो मैंने डिग्री के तौर पर आप बोलेंगे तो एमए की शिक्षा, डिग्री मैंने प्राप्त की है ख्याल गायन में। एमए मैंने किया प्रागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से, बीम्यूज भी मैंने किया था, उसके बाद मैंने एमए किया वहां से
0: जी।
1: लेकिन ये तो खैर डिग्री की बात अलग है, लेकिन बचपन से जब मेरी आंख खुलती थी तब मेरी माता जी उस समय 5:30-5:15 बजे से गाना शुरू कर देती थी और मैं उसको सुना करता था। 5 बजे से मेरी माता जी का गायन शुरू होता था, 5:45 तक मेरी माता जी का गायन समाप्त हो जाया करता था
0: जी।
1: तो बचपन से ही संगीत के स्वर मेरे कानों में, तानपुरी के स्वर मेरे कानों में पड़ते थे, तो स्वाभाविक रूप से मेरे में संगीत की रुचि उत्पन्न हुई। और आप जानते हैं कि मेरे नाना जी पद्म भूषण पंडित विनायक राव पटवर्धन
0: जी,
1: ये मेरे नाना जी।
0: क्या बात,
1: संगीत को कह सकता हूँ कि मतलब विरासत में ही मुझको संगीत एक तरह से प्राप्त हुआ।
0: चूंकि आप

0: ने बताया कि संगीत आपको विरासत में मिला और आकाशवाणी के प्रसारण का एक बहुत बड़ा हिस्सा संगीत है, उसमें शास्त्रीय संगीत का खास मुकाम है और आप चूंकि शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहे हैं, बचपन से ही संगीत का वातावरण आपको मिला है और आपने संगीत सीखा भी है। आकाशवाणी की अगर आपकी संपूर्ण यात्रा की बात की जाए तो क्या इसमें संगीत के ही क्षेत्र में आपका दखल रहा है या उसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आप जुड़े रहे?
1: देखिए, मूलतः तो मैं ये भाग्यशाली रहा मैं कि मैं मेरा जो सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी से कार्यक्रम अधिकारी संगीत के तौर पर हुआ था
0: जी।
1: और लगभग सभी आकाशवाणी केंद्रों में मेरे पास संगीत का कार्यक्रम रहा। ये अलग बात है कि कुछ केंद्रों पर मुझे और दूसरे कार्यक्रम भी मिले और मैंने अपने बुद्धि के अनुसार जैसा भी मैं कर सकता था वैसे वो काम मैंने पूर्ण किया। जैसे कि आकाशवाणी फैजाबाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4.5 वर्षों तक मैंने खेल खिलाड़ी एक कार्यक्रम होता था वहां पर, जो रात को रविवार को 8 से 8:20 तक हुआ करता था
0: जी।
1: तो मैं उस कार्यक्रम को सजीव प्रसारित करने के लिए रात को 8 बजे आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद, जो कि आप अयोध्या के नाम से जाना जाता है
0: जी,
1: उस समय जाता था और वहां एक उद्घोषक होते थे, कोई ना कोई उद्घोषक कार्यरत होते थे, उनके साथ मिलकर मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया करता था। तो इस कार्यक्रम की मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के लोगों को अपने समय के प्रति कितना प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। आप तो खैर बहुत अच्छे से उस बात को जानते हैं
0: जी।
1: एक बार क्या हुआ कि मैं, मुझको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पे पंचकोसी परिक्रमा होती है, पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है, मुझको जानकारी थी। लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि आकाशवाणी अयोध्या का जो रास्ता है उस रास्ते से ही वो पंचकोसी परिक्रमा का रास्ता भी जाता है
0: जी।
1: मेरी एक आदत थी कि 8 बजे का कार्यक्रम है तो मैं 15-20 मिनट पहले वहां आकाशवाणी में पहुंच जाया करता था। उस दिन भी मैं वहां पहुंचा और जैसे ही आकाशवाणी के पास में पहुंचा तो इतनी भीड़ ज्यादा थी, तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने स्कूटर एक जगह खड़ी की और आप विश्वास नहीं करेंगे 500 मीटर का रास्ता मुझको पैदल जाने में करीब 15-17 मिनट लग गए। लेकिन चूंकि मैं 15-20 मिनट अपने हाथ में लेके चलता था तो 8 बजने को जब 1 या 2 मिनट कम थे मैं स्टूडियो में पहुंच गया और वो कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया।
0: क्या बात, क्या बात। केलकर साहब, इस तरह की रोमांचक घटनाएं रेडियो से जुड़े लोगों के जीवन में अक्सर घटी है। आपका चूंकि बचपन रायपुर से जुड़ा रहा है और रायपुर से ही आपका परिवार भी जुड़ा रहा है, आकाशवाणी रायपुर में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अगर हम रायपुर की स्मृतियों को आपके मानस पटल में जो अंकित हैं उन पन्नों को पलटना चाहें तो वो कौन कौन सी यादें हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी की तो, रायपुर की तो इतनी यादें हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, और आप लोगों का इतना स्नेह मुझको मिला है कि मैं उसको अपने जीवन भर कभी नहीं भूल सकता, इसमें कोई दो मत नहीं। तो देखिए, आकाशवाणी रायपुर में जब मैं रीवा से स्थानांतरित होकर आकाशवाणी रायपुर पहुंचा
0: जी,
1: तो वहां पर माननीय ममता चंद्राकर मैडम उस समय सहायक निदेशक थी
0: जी,
1: और वहां पे जितने लोग थे वो लगभग सभी लोग उसको जानते थे कि ये संगीत परिवार से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझको कहा कि आप संगीत रचनाएं की जब आवश्यकता हो तो आप इस मास का गीत, एक कार्यक्रम होता था आपको याद होगा,
0: बिल्कुल जी जी
1: है ना, उस इस मास का गीत को जो कार्यक्रम होता था उसमें आपने भी अपने आवाज दी है मेरे एक गीत में
0: जी जी।
1: पहले उसको अपन पठन करते थे उसके बाद वो गीत होता था,
0: प्रसारित
1: होता था
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें से मैंने इस मास का गीत के लिए संगीत दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथी भी वहां पर थे, मेरे परम मित्र थे संजय पांडे
0: जी,
1: एक और मेरे बचपन के मित्र थे राजेश फाई और मेरे गुरुदेव के लड़के समीर शुक्ला
0: जी,
1: और वहां पर जो उस समय मेरे साथ तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत थे आदरणीय रामाने
0: जी,
1: आदरणीय वरखड़े जी। तो विज्ञापन जब काम होता था तो उसमें गीत बनाए जाते थे विज्ञापन के, जैसे विज्ञापन के कोई उनको एक वो सीरियल मिला, इसके आपको 12-7 एपिसोड करने तैयार करने हैं
0: जी, प्रायोजित कार्यक्रम के,
1: प्रायोजित कार्यक्रम जी, हाँ जी हाँ
0: जी जी।
1: तो उसका एक, आपको मालूम है कि उसका एक शीर्षक गीत हुआ करता था जिसको अपने को आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से उसको तैयार किया जाता था,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। कई सारे गीत मैंने तैयार किए लेकिन एक गीत का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा
0: जी,
1: वो गीत था आओ आशा दीप जलाएं, कुछ रूप पे एक कार्यक्रम
0: बिल्कुल
1: 13 एपिसोड का कार्यक्रम वो करना था, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर बनाया जाना था, आकाशवाणी रायपुर के द्वारा इसकी निर्मित की जानी चाहिए थी। तो समीर शुक्ला ने मुझको बताई, ये बात बताई थी कि वहां के जो एक आईएएस अधिकारी थे उन्होंने समीर जी से कहा कि ये जो कुष्ठ रोग का कार्यक्रम है
0: जी,
1: इसके लिए जो शीर्षक गीत होगा उसको आप लोग ऐसा कीजिए कि मुंबई से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आकाशवाणी रायपुर को मैं नहीं समझता हूँ कि इतने अच्छे लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और इतने अच्छे रिकॉर्डिंग की सुविधा यहाँ पर है कि आप उस गीत को बना सके। तो समीर ने कहा कि सर हम प्रयास करते हैं और आपको यदि लगा कि हम ठीक हैं तो आप उनको आगे मौका दीजिएगा, नहीं तो फिर आप जैसा बोलते हैं वैसा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये बात आके समीर ने मुझको आके बताई। अब भगवत कृपा से मैंने कहा यार समीर ये तो अपने लिए आकाशवाणी रायपुर के लिए भी एक खुला चैलेंज है, मतलब एक पर इसको अपने को किसी भी तरह से पूर्ण करना है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात उस समय ये थी कि मैं रायपुर में पोस्टेड था, मेरे माता पिताजी बुढ़ापारा में ही रहते थे, आपको मालूम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो समीर ने जब मुझको एक गीत दिया तो मैंने गीत की जब संगीत रचना अपने घर में बैठ कर की उसके माता पिता को लाकर सुनाई तो उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कहा कि ऐसे ऐसे परिवर्तन करो। और आपको यदि याद होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने किसी और राग में इस गीत की रचना की थी
0: जी,
1: उस समय आप भी बैठे थे वहां पर और रमानी साहब भी वहां पर थे, उनको मैं सुना रहा था ये गीत
0: जी जी।
1: तो आपने एक पॉइंट आउट किया था जिसको मैंने मान लिया, आपने कहा था कि इस गाने की धुन तो जो है सांझ ढले गगन तले से कुछ उसकी साम्यता हो रही है
0: जी जी।
1: मैंने कहा ठीक है, मैं इसका एक स्वर जो है वो एक स्वर अलग कर देता हूँ और उसके बाद अगले दिन लाके मैंने दूसरे तरीके से इसकी स्वर रचना की
0: जी।
1: और फिर उसके बाद मेरे माता पिता को सुनाया, उन्होंने पास किया। फिर रमानी जी कान के बहुत अच्छे हैं, वो उसको पहले मैं सुनाया करता था तो वो बोलते थे हाँ खेलकर ये ठीक है अपन इसको अपन कर सकते हैं। और उसके बाद आप भी वहां पर दूसरी बार भी आप वहां पर थे तो मैंने कहा और दीपक जी बताइए अब कैसा लग रहा है, तो बोले नहीं सर अब तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है
0: जी जी।
1: तो मैं वो गीत थोड़ा सा आपको यहाँ पर गा के गुनगुना
0: बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत है बिल्कुल।
1: मैं गायक नहीं हूँ मैं,
0: प्लीज प्लीज सर,
1: लेकिन जैसा भी मुझको बन पड़े मैं सुनाना चाहता हूँ।
0: स्वागत है सर, स्वागत।

0: ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो समीर जी ने क्या किया, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की
1: जी।
0: उन अधिकारी का फोन आया कि क्या हुआ इस गीत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये गीत जो है सर तैयार हो गया है। बोला अच्छा आपने तैयार कर लिया, चलिए अच्छी बात है, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आपको इसको मुंबई में तैयार करवाना चाहिए करके, आपने करवा लिया अच्छी बात है
1: जी।
0: वो आए और समीर ने क्या किया उनको स्टूडियो में बैठाया और स्पीकर पे उनको बड़े स्पीकर पे अपने जो होते हैं ना स्पीकर होते हैं ना बड़े स्पीकर
1: जी जी जी जी
0: उस पे उनको सुनाया। तो सुनाने के बाद उनको ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि समीर जी देखो मैं तो आपसे पहले ही कहना था कि ये आपके बस की बात नहीं है, आपने अच्छा किया कि उसको आकाशवाणी मुंबई से इसको तैयार करवा लिया
1: जी।
0: तो सुनने के बाद समीर उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और उनको बताया कि नहीं सर ये गाना मैं आपको बताऊं कि ये गाना हमारे केंद्र पर ही रिकॉर्ड किया गया है।
1: अच्छा।
0: तो ये सुन के वो बोले कि ये गाना आपके केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया
1: है। जी जी जी।
0: तो बोले जब आपने एक शीर्षक गीत के लिए इतनी मेहनत की है
1: जी।
0: और ये पूरा 13 एपिसोड का जो ये जो है ये आप ही बनाएंगे।
1: क्या बात क्या बात।
0: मुझे बहुत खुशी की मेरे जो अपने गुरुओं से मैंने जो संगीत सीखा उसका कुछ उपयोग मैं आकाशवाणी रायपुर के लिए कर सका और आकाशवाणी रायपुर को विज्ञापन में अपना कुछ योगदान में दे सका।
1: क्या बात। इसके अलावा अगर आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों की आपकी संपूर्ण यात्रा की बात करें तो उपलब्धि पूर्ण आपके कार्यों में किन किन कार्यों को आप और याद करना चाहेंगे?
0: तो आकाशवाणी इंदौर का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा
1: जी।
0: आकाशवाणी इंदौर में मेरे लिए सबसे बड़ा जो यादगार का पल था वो था जनवरी 2018 में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन
1: जी।
0: अब दीपक जी आप जानते हैं कि इसमें देश भर के 22 भाषाओं के अलग अलग कवि और उनके अनुवाद करने वाले 22 लोग भी आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और आकाशवाणी महानिदेशालय से भी इसमें हमारे अधिकारी जो है वो आते हैं देखने के लिए कि ये कार्यक्रम कैसे किया जा रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत बड़ा आयोजन था, ये कार्यक्रम इतना सफल रहा था दीपक जी कि इसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको उसी कार्यक्रम के माध्यम से इसको सम्मिलित किया गया।
1: क्या बात।
0: और आकाशवाणी को एक सर्टिफिकेट दिया गया और ये संस्था जो है लंदन की संस्था है दीपक जी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: उन्होंने चलते कार्यक्रम में एक गुवाहाटी के रिटायर्ड जज थे वो आए हुए थे, उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट आकाशवाणी इंदौर में राजशेखर जी को सौंपा।
1: क्या बात।
0: वो उन्होंने ले जाके दूसरे दिन डीजी को सौंपा। मैं चूंकि संगीत से जुड़ा रहा हूँ इससे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर मैं आकाशवाणी इंदौर में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर कार्य करने गया तो वहां पे कुछ वरिष्ठ कलाकार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोग ए ग्रेड में रहते हैं, हम लोग को करीब करीब किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 15 साल हो गए थे
1: जी।
0: लेकिन अभी भी अखिल भारतीय संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं शनिवार और रविवार को अपने कार्यक्रम होते थे आपको मालूम है
1: जी जी जी,
0: उसमें हमारा प्रसारण नहीं हुआ है। तो फिर मैंने ऐसे सभी कलाकारों की लिस्ट बनाई और आकाशवाणी महानिदेशालय में पत्र लिखा कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, यदि उनका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होता है तो ये न सिर्फ आकाशवाणी इंदौर के लिए बल्कि आकाशवाणी दिल्ली के लिए भी गर्व की बात होगी कि इनका प्रसारण सभी लोग

0: नहीं देखा, प्रत्येक वर्ष चार या पांच या तीन या चार कलाकारों के नाम आते थे और उनका प्रसारण वहां से होता था।
1: आप कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर, सहायक निदेशक के तौर पर आकाशवाणी भोपाल में रहे हैं और वहीं से आपने आकाशवाणी को अलविदा कहा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब कोई व्यक्ति कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाते हैं, तो आपको कैसा लग रहा था भोपाल में?
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाना वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है
1: जी।
0: और सबसे ज्यादा कार्य मैंने आकाशवाणी भोपाल में किया, ये भी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: सौभाग्य से उस समय ऐसा था कि मेरे ऊपर 19 केंद्रों का भार भी था, उस समय दिया गया था मुझको प्रभार दिया गया था छत्तीसगढ़ और आकाशवाणी के मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों का
1: जी।
0: प्रभार मुझको सौंपा गया था, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन वहां का जो स्टाफ था इतने अच्छे लोग वहां पर थे कि उनके सहयोग से मुझको पता ही नहीं चला कि मैंने वहां पर अपने 5 साल 7-8 महीने जो भी मेरा कार्यकाल था वो कैसे वहां मैंने बिताया और किस तरह से वो संपन्न हुआ। एसपी सिंह साहब थे वहां पर, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, अत्यंत अनुभवी कार्यक्रम निष्पादक थे और जब कभी महानिदेशालय से कभी इस तरह की परिस्थिति आती थी तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और एक इनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, राकेश ढोंडियाल कार्यक्रम निष्पादक के पद पर थे वो, लेकिन वो इतने होशियार कार्यक्रम निष्पादक थे कि उनका रूपक जो उनको बनाए जाते थे अद्वितीय होते थे वो। उनको इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार भी मिले थे, आप जानते होंगे इस बात को, और आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के कई पुरस्कार श्री राकेश ढोंडियाल जी को प्राप्त हुए थे। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि ऐसे लोगों के साथ मुझको आकाशवाणी भोपाल में कार्य करने का मौका मिला।
1: केलकर साहब, मन तो कर रहा है कि आपसे और भी बहुत सारी बातें करें, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की सीमा हमसे यही कह रही है कि अंत में आपके जीवन में आकाशवाणी का जो योगदान रहा है उसे आप किन शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे?
0: देखिए, आकाशवाणी जैसी संस्था में अपनी सेवाएं देना ये अत्यंत गरिमामय और गर्व की बात होती है दीपक जी, और मुझे अहोभाग्य ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं अपने सद्गुरु जो मेरे लिए साक्षात परम पिता परमेश्वर ही हैं, श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की परम कृपा, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे शुभ चिंतक मित्रगण और मेरे सभी कार्यालयीन सहयोगियों के सहयोग से मैं ये अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर सका, इसका मुझे संतोष है और मैं इसके लिए अपने ईश्वर सहित सबका आभारी हूँ।
1: सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में केलकर जी का समय किस तरह से बीत रहा है?
0: देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है घर के जो काम होते हैं वो करना होता है और संगीत तो मेरे खून में है, तो आजकल यूट्यूब और इतनी इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं अपने पास कि आराम से आप उन सबको सुन सकते हैं। दिनचर्या के बारे में आपको मैं क्या कहूँ, जैसे सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा बाहर पैदल टहल कर आ जाता हूँ, आने के बाद थोड़ा प्राणायाम कर लेना, और कभी कभी मैं आकाशवाणी भोपाल का एक कार्यक्रम होता है नमस्कार भोपाल
1: जी,
0: तो टहल कर आने में यदि 7:20, 7:30 हो जाते हैं तो कभी कभी उस कार्यक्रम को भी मैं लगा लिया करता हूँ, और या किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में कभी कोई कार्यक्रम अच्छा चल रहा हो तो उस कार्यक्रम को भी सुन लेता हूँ। और फिर घर के कुछ काम है, जैसे नवी मुंबई में खारघर करके एक स्थान है, वहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं
1: जी। तो केलकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि यूं ही आपका जीवन मनोरंजन के साथ बीते, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना है। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 में आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: अलका याग्निक के स्वर में अभी आप समीर की रचना सुन रहे थे। फिल्म तेरे नाम के इस गीत को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। आकाशवाणी एट 90 में अब सुनते हैं रेडियो श्रोता पूनम गुप्ता की प्रतिक्रिया।
1: आकाशवाणी एट 90।
2: नमस्कार, मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आकाशवाणी का 90 वर्ष पूर्ण होना न सिर्फ एक संस्थान की वर्षगांठ है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपने यादों और अनुभवों को फिर से जीते हैं। रेडियो के साथ हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। दादा दादी या माता पिता के साथ बैठकर रेडियो पर समाचार और भक्ति संगीत सुनना बहुत याद आता है। दादा दादी के साथ बैठकर बिना का गीतमाला या विविध भारती के पुराने फिल्मी गीत सुनना और माता पिता का उन गानों के पीछे की कहानियां सुनाना एक अनमोल पल था। मैं रेडियो के कई तरह के कार्यक्रमों का आनंद लेती हूँ, जैसे चित्रपट, संगीत, विविध भारती, लघु नाटक, हास्य कार्यक्रम, युवाड़ी, बाल सभा, सभी मुझे पसंद है। इसके अतिरिक्त किसानवाड़ी, चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि उन्नत कृषि पद्धतियां, सरकारी योजनाएं, बाल मूल्य और स्वास्थ्य व सामाजिक मुद्दों पर ऑडियो सामग्री से मैंने व मेरे परिवार ने बहुत लाभ उठाया है। रेडियो के माध्यम से देश दुनिया के अलावा स्थानीय मुद्दों के समाचार भी बहुत अच्छे से सुनने को मिलते हैं। रेडियो विभिन्न प्रकार के ज्ञानवाहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिनमें विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर जागरूकता फैलाने का भी एक प्रभावी माध्यम है। मैं आशा करती हूँ कि आकाशवाणी इसी तरह अपनी मधुर ध्वनि से देश को प्रेरित करता रहेगा और नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। धन्यवाद।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लता मंगेशकर के सुर में अभी आपने फिल्म हम आपके हैं कौन का गीत सुना। गीत लिखा था देव कोहली ने, संगीत था राम लक्ष्मण का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90. ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: एसपी बालासुब्रमण्यम के सुर में अभी अपने फिल्म साजन का गीत सुना। रचना थी समीर की, संगीत था नदीम श्रवण का।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, SHROTARAIGARH, यानी श्रोता रायगढ़@gmail.com।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। 22 की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर।

0: अमचेरी भाई और साथियों के सुर में अभी आप ये लोकगीत सुन रहे थे। अमचेरी
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

हम चिरी भाई तारा भाई राजकुमार और गोवर्धन यादव के सुर में अभी आप ये लोकगीत सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम बाजे मांदर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के आठ बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेती हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
10: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
12: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
13: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
14: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Tirpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
13: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
15: With the approval of the President, Dexa cleared for the swearing-in ceremony of N. Rangasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rangasamy is set to assume office for a record fifth term after the ANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the Assembly elections. 76-year-old N. Rangasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NR Congress, he served as Chief Minister from 2011 to 2016 and later headed the ANRC-BJP Alliance government from 2021 to 2026. In the recently held assembly elections, Mr. Rangasamy was elected from both the Thattanchavadi and Mangalam constituencies. In the 30-member assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Vibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
16: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
6: The BJP Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Naib Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Acharya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District

बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी नन्हे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा में। आज की बाल सभा में ढेरों जानकारियां हैं, साथ ही साथ होंगे प्यारे प्यारे से गीत और होंगी कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी बाल सभा की। बच्चों आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन है, पता है क्यों? क्योंकि आज है 10 मई। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मई प्यारा दिन क्यों हो गया? क्योंकि आज हम मना रहे हैं मदर्स डे। तो कुछ ना कहते हुए अपनी मम्मी के लिए ये गीत हम समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं इस गीत को।

और इस गीत के बाद बच्चों अब हम जानेंगे चोंच पर सिंग वाला पक्षी को। बच्चों राइनोसेरॉस हार्नबिल एक आकर्षक और अनोखा पक्षी है। इसकी चोंच पर राइनोसेरॉस यानी कि गेंडे की तरह सिंग जैसा उभार होता है, इसी कारण इसे यह नाम मिला है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। राइनोसेरॉस हार्नबिल का वैज्ञानिक नाम है बसरस राइनोसॉरस। यह घने वर्षा वनों में रहना पसंद करता है। इस पक्षी की सबसे बड़ी पहचान इसकी बड़ी चोंच और इसके ऊपर बना सींग जैसा कास्क है। यह कास्क लगभग लाल और पीले रंग का होता है और ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, जिससे यह पक्षी बहुत आकर्षक दिखाई देता है। बच्चों इसका शरीर ज्यादातर काले रंग का होता है, जबकि पूंछ सफेद होती है। यह मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। राइनोसेरॉस हार्नबिल फल खासकर अंजीर खाना पसंद करता है। इसके साथ साथ बच्चों यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीव भी खा लेता है। यह बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है, इसलिए जंगल के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। राइनोसेरॉस हार्नबिल मलेशिया का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और बच्चों फीमेल अंडे देने के समय पेड़ के खोखले तने में खुद को बंद कर लेती है और जो मेल होते हैं वो पक्षी बाहर से उसे खाना देता रहता है। और अब हम इसके बाद जानेंगे ग्रेट हॉर्नबिल को। बच्चों ग्रेट हॉर्नबिल भारत, नेपाल, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में पाया जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल भारत में सबसे प्रसिद्ध हॉर्नबिल प्रजाति मानी जाती है और घने जंगलों में रहती है। इसकी चोंच बहुत बड़ी और पीले रंग की होती है, जिसके ऊपर चौड़ा कास्क होता है जो राइनोसेरॉस हॉर्नबिल की तरह मुड़ा हुआ नहीं होता है। वहीं राइनोसेरॉस हॉर्नबिल की चोंच के ऊपर बना कास्क मुड़ा रहता है और चोंच लाल और पीले रंग की होती है। तो बच्चों यह थी एक रोचक जानकारी चोंच पर सींग वाला पक्षी यानी कि राइनोसेरॉस हॉर्नबिल।

के बारे में। और आइए अब हम बात करते हैं बाघ की। बिल्ली प्रजाति का यह प्राणी बेहद रौबदार और दमदार दिखता है। वैसे इसे बिल्ली का दर्जा देना कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि आसपास दिखने वाली बिल्लियों को तो हम झट से भगा देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बिल्ली को सामने देख सिट्टी पिटी गुम होना तय है बच्चों। हम बात कर रहे हैं बाघ की, जो बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। तो आइए इस विशाल बिल्ली को जरा करीब से जानते हैं। बच्चों, शोधकर्ताओं के बीच इस बात पर काफी सालों से बहस छिड़ी है कि बाघ घरेलू बिल्ली की तरह आवाज निकालता है या नहीं, लेकिन बाघ दहाड़ते हैं, कराहते हैं, गरजते हैं और गुर्राते भी हैं। हर बाघ के शरीर पर अलग अलग तरह की धारियां होती हैं, यानी किन्हीं भी दो बाघों की धारियां एक सी नहीं रहती हैं बच्चों। ये धारियां न केवल उनके फर बल्कि उनकी त्वचा पर भी होती है। बाघ के शरीर पर दो तरह के फर होते हैं, पहले बाहरी रक्षा के लिए जो ऊपर मौजूद होते हैं, दूसरे गर्मी प्रदान करने के लिए जो नीचे मौजूद होते हैं। शेर के कान पीछे से काले रंग के होते हैं, जिन पर एक सफेद निशान बना होता है, इसे ऑक्युलस कहते हैं। अंधेरे में देखने की क्षमता इनमें कमाल की होती है बच्चों। इंसानों की तुलना में बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ज्यादातर मांसाहारी पशुओं के 42 दांत होते हैं, लेकिन बाघ के केवल 30 दांत होते हैं। बाघ खुद को अपनी जीभ की मदद से संवारते हैं। इनकी जीभ से तेल जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे ये अपने फर पर लगाते हैं। इनके हर पंजे में 4 नख होते हैं और आगे वाले दोनों पंजों में एक अतिरिक्त नख होता है। ये थोड़े पीछे की तरफ मौजूद होते हैं और जमीन को नहीं छूते। ये खास तौर पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाघ कमाल के तैराक भी होते हैं। यह एकमात्र ऐसी बिल्ली है जिसे पानी में समय बिताना अच्छा लगता है। तेज गति में दौड़ते वक्त इनकी पूंछ इन्हें संतुलित रखने में मदद करती है। और बच्चों, बाघ रात्रिचर प्राणियों में से एक है और ये अक्सर रात को शिकार करते हैं। बाघों के समूह को स्ट्रिक कहते हैं। बाघ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, वनस्थली, दलदली और हरी भरी भूमि पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस जानकारी के बाद आइए हम सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है सर्दी, गर्मी और वर्षा। एक पर्वत था उभयाचल। उसकी गुफा में सर्दी, गर्मी और वर्षा नाम की 3 बहनें रहती थीं। तीनों एक दूसरे से बहुत जलती थीं। वे हमेशा एक दूसरे को अपने से छोटा साबित करने की कोशिश करती रहती थीं। इसलिए उन लोगों के जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन उन तीनों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि हमसे सबसे अच्छा कौन है। सर्दी कहती, सबसे अच्छी मैं। तो गर्मी कहती, नहीं मैं। वर्षा अपनी बात अड़ी थी, तुम दोनों तो मेरे आगे कुछ भी नहीं। धीरे धीरे यह बहस तू मैं बदलने लगी। तभी उधर से एक बूढ़ा राहगीर निकला। तीनों ने उसे घेर लिया और वे उससे फैसला करने को कहने लगी। बूढ़ा सक पकाया, किसी एक को अच्छा कहता तो बाकी दोनों बुरा मान जाते। बहुत सोचने समझने के बाद उसे यह बला अपने ऊपर से टालने में ही भलाई दिखी। चालाकी से काम लेते हुए वह बोला, बेटियों, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी। तुम लोगों का फैसला करना मेरे बस की बात नहीं है। सामने तलहटी में जो गांव दिख रहा है, वहां कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वही तुम्हें सही न्याय दे सकती है। अगले दिन सुबह सुबह सर्दी बुढ़िया के डेरे पर पहुंच गई। बुढ़िया ने प्रेम से उसका स्वागत किया। कौन बिटिया सर्दी, आओ बैठो, कैसे आना हुआ। सर्दी ने सारी बात बताई और फैसला करने का आग्रह किया। बुढ़िया झट से बोली, भला इसमें क्या शक है कि तुम अपनी बहनों में सबसे अच्छी हो। जब तुम्हारा समय आता है तब मजे ही मजे होते हैं। रात में रजाई में दुबक कर सोना और सारे दिन गुनगुनी धूप में बैठकर धूप सेकना, तरह तरह के पकवान उड़ाने को मिलते हैं। ऊपर से सच बेटी, मुझे तुम ही प्रिय हो। वर्षा और गर्मी तो क्या, तुम संसार में सबसे अच्छी हो। बस एक काम करना होगा। कौन सा काम मौसी, सर्दी ने खुश होते हुए पूछा। सिर्फ यह कि सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने गुणों को और निखारने का प्रयास शुरू कर दो, बुढ़िया ने समझाया। थोड़ी देर बाद सर्दी खुशी खुशी विदा लेने लगी तो बुढ़िया बोली, बिटिया मेरे बातें वर्षा और गर्मी में मत कहना, वरना वे मुझे परेशान करेंगी, क्योंकि दोनों ही तेज स्वभाव की हैं। सर्दी उसकी बात मानकर चली गई। दोपहर में गर्मी आ थमकी। बुढ़िया ने उसकी भी खूब तारीफ की। बेटी में ठहरी बूढ़ी और गरीब, न शरीर में ताकत है न गांठ में पैसा कि महंगे कपड़े, चप्पल, जूते और आलिशान मकान बनवाकर सर्दी और बरसात का मुकाबला कर सकूं। एक तुम ही हो जो दुनिया के मेरे जैसे करोड़ों लोगों को राहत देती हो। सर्दी और वर्षा तो इतनी दुष्ट हैं कि जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ जान पाए तो मुझे जिंदा ही ना छोड़े। कैसे जानेंगे मौसी, मैं बताऊंगी ही नहीं, गर्मी छट से बोल पड़ी। हाँ बेटी, कहना मत, बुढ़िया ने समझाया। एक काम और करो, तुम अपनी अच्छाइयों को बढ़ाकर संसार के लिए अधिक उपयोग

और कल्याणकारी बनने का प्रयास करो, फिर दुनिया में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई न रह जाएगा। सचमोसी तब मैं आज से यही शुरू करती हूँ, कहकर गर्मी चली गई। शाम हुई नहीं कि वर्षा टपक पड़ी। बुढ़िया उसकी खातिरदारी में क्यों पीछे रहती, बड़े मीठे स्वर में बोली, बिटिया रानी तुम्हारी समस्या मैं चुटकियों में सुलझा दूंगी, मगर इसके पहले तुम मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पक्का वादा रहा मौसी, आपकी खुशी के लिए मैं बहुत कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटी यह बात बिल्कुल सच है कि तुम संसार के जीवन का आधार हो, तुम ना आओ तो अकाल पड़ जाए और लोग भूखों मरने लगे, इसलिए तुम्हारे आने पर खेत बाग जंगल सब हरे भरे होकर झूमने लगते हैं। ऐसे में गर्मी सर्दी भला कैसे तुम्हारा मुकाबला कर सकती हैं। थोड़ी देर रुककर लंबी सांस लेते हुए बुढ़िया अपनी बात पर आई, मगर बेटी यह हमें सबसे सबके सामने कह दूं तो दुष्ट सर्दी गर्मी मुझ पर नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम भी किसी से मत कहना। ठीक है मौसी, बेटी एक बात और सुनती जाओ, वर्षा को रोककर बुढ़िया बोली, तुम मुझे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं दुनिया के सबसे सम्मानित पात्र के रूप में तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम अपने सद्गुणों को बढ़ाकर सबके लिए और लाभकारी बनने की कोशिश करो, मैं आज से ही आपकी इच्छा पूरी करने में जुट जाऊंगी। वर्षा ने खुशी से गदगद हो उत्साह भरे स्वर में आश्वासन दिया। सर्दी गर्मी और वर्षा तीनों बहनें अपनी श्रेष्ठता के विश्वास में डूबी दुनिया के लिए अधिक कल्याणकारी बनने में जुट गईं। लोगों के कल्याण के कामों को करने में उन्हें इतनी खुशी मिली कि किसी से ईर्ष्या द्वेष रखने का सवाल ही नहीं रहा। उनके जीवन की अशांति पता नहीं कब गायब हो गई और उभयाचल की उस गुफा में सुख का साम्राज्य छा गया। तो बच्चों, यह थी कहानी सर्दी गर्मी और वर्षा तीनों बहनों की, और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

करते हैं। सभी में कोई ना कोई खूबी होती है जो उनको खास बनाती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अनोखे पक्षियों के बारे में। तो बच्चों, गिलमोट स्पेन और ब्रिटेन के तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है। और बच्चों, गिलमोट यह चॉकलेटी सफेद और काले रंग का होता है। इसकी खास बात यह है कि यह घोंसला नहीं बनाता। यह पक्षी करीब 42 सेंटीमीटर लंबा होता है। मादा पक्षी अंडे अपने जालीदार पंजों के बीच रखती हैं। यह साल में केवल एक ही अंडा देती है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे तुराकों के बारे में। बच्चों, तुराको एक रंग बिरंगा पक्षी है। यह कई रंगों, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी और भूरे रंग में पाया जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के सवाना के घने सदाबहार जंगलों में मिलता है। तुराको लगभग 40 से 75 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये उड़ने में कमजोर होते हैं, इसलिए ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरते। और अब हम आपको बताते हैं डीपर के बारे में। बच्चों, डीपर पक्षी यूरोप की पर्वतीय नदियों के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। डीपर की आवाज मधुर होती है। यह तैर भी सकता है और पानी में गहराई तक डुबकी भी लगा सकता है। नदियों के बढ़ते प्रदूषण की वजह से इनका अस्तित्व अब खतरे में है। इनकी पलकें पारदर्शी होती हैं, इसलिए यह आंखें बंद करके भी सब कुछ देख सकते हैं। और अब हम जानते हैं क्वेलिया के बारे में। बच्चों, क्वेलिया अफ्रीका में पाए जाने वाला पक्षी है। क्वेलिया की संख्या दुनिया में लगभग 1 अरब है। यह दुनिया में अधिक संख्या में पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी चोंच लाल रंग की होती है। इसे लाल चोंच क्वेलिया के नाम से भी पुकारा जाता है। यह झुंड में रहना पसंद करते हैं। और अब बारी आई फिलीपींस ईगल के बारे में जानने की। बच्चों, फिलीपींस ईगल फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी है। यह बड़े आकार का लंबे चौड़े शरीर वाला पक्षी है। यह काफी डरावना भी दिखता है। बच्चों, यह इतना बड़ा होता है कि छोटे पशुओं जैसे बंदर का भी शिकार कर लेता है। तो यह थी जानकारी पक्षियों की अनोखी दुनिया के बारे में। और आइए अब हम जानते हैं जादुई कुएं को। बच्चों, एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, जिससे लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन दिया। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। बच्चों, तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कैसी बहके बहके बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वे आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों और गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों और गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। बच्चों, वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात खत्म कर तेनालीराम गृह मंत्री को देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा और उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। साथ ही इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंप दी गई। तो बच्चों, यह थी कहानी जादुई कुएं की।
और बच्चों आइए अब हम जानते हैं

कुछ विशेष अभयारण्यों को। हरियाली के बीच घूमना, जानवरों और पक्षियों को अपनी आंखों से देखना एक रोमांचकारी अनुभव देता है। तो क्यों ना इस गर्मी की छुट्टियों में इन जगहों की सैर की जाए बच्चों। तो आइए आपको हम सैर करवाते हैं रातापानी बाघ अभयारण्य की तरफ। तो बच्चों, रातापानी बाघ अभयारण्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सोनकुत्ता, जंगली जिसे जंगली कुत्ता भी कहा जाता है बच्चों, स्लोथ, रीछ, धारीदार लकड़बग्घा, गीदड़, लोमड़ी, चीतल, सांभर और नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों चिकारा, चौसिंगा, हनुमान लंगूर, रिसस बंदर और भारतीय शैल अजगर प्रमुखता से पाए जाते हैं। वर्ष 2021 में रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। और अब आपको बताते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। बच्चों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1983 के दौरान प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व बनाने के लिए भारत के प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे मुख्य रूप से साल, टीक और बांस के पेड़ है। इसमें उत्कृष्ट प्रकार के घास के मैदान हैं, जो जंगली भैंसों, चीतल, बार्किंग डियर, नीलगाय, गौर और अन्य शाकाहारी जीवों को भरपूर मात्रा में चारा प्रदान करते हैं। और इसके बाद आइए हम जानते हैं औरांग राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि असम में है। बच्चों, औरांग राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य का एक लोकप्रिय नेशनल पार्क है। इस उद्यान में विभिन्न वनस्पति, जंगली जीव, पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं। इसे 1985 में एक अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया और 13 अप्रैल 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। आप यहाँ कई जंगली जीवों को देख सकते हैं, जिसमें एक सिंह वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, हाथी, जंगली भैंस, हिरण, जंगली सुअर जैसे जानवर शामिल हैं। यहाँ मछलियों की 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और अब जानते हैं हम जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बच्चों, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार उपमंडल के अंतर्गत जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें विस्तृत घास के मैदान है और यह नालों और वन्य क्षेत्रों से भरा हुआ है। सन 1941 में इसे राज्य के वनस्पति और जीवों को बचाने के लिए अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत भारतीय गैंडा भी था और पश्चिम बंगाल में इसकी सबसे बड़ी संख्या यही मौजूद है। और अब आपको बताते हैं चैल अभयारण्य को, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बच्चों, चैल अभयारण्य चैल में स्थित हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। साल 1976 में इस क्षेत्र को सरकार द्वारा एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसमें पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें भारतीय मुंजटैक, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, रेड जंगल फाउल, कक्कर, चित्तीदार हिरण और हिमालयन काला भालू, कोरल, आम लंगूर, उड़न गिलहरी जैसे जीव पाए जाते हैं। शाम होते ही इस अभयारण्य में भौंकने वाले हिरण और काली जिन दिखाई पड़ते हैं। और अब हम आपको बताते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बच्चों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन्य क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1977 ईस्वी को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय यहाँ बाघ, तेंदुए, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, चीतल, कृष्ण मृग, चौसिंगा, सांभर, नीलगाय जैसे जानवर थे। तो बच्चों, यह थी जानकारी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। और इसके साथ ही बच्चों, जाने का समय हो चला है। तो जाने से पहले सुनवाते हैं ये प्यारा

बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा भी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं। विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे हैं आज नए गीत। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का सुकून छिपा होता है। वो खुद थक जाती है लेकिन हमारी थकान पहचान लेती है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत। अनुपम अमोद की आवाज, इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: आखिरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल, प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

फ्लाइंग जेट। इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमरे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज़।

0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: या मिलन को जा

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुन।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला तीसरा स्थान। और प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। श्री शाह देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर में चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बागीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। देश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। प्रशासन विभाग ने कई वरिष्ठ इंजीनियरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार रायपुर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह को नगर निगम बिलासपुर भेजा गया है। वहीं कवर्धा के कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम को दुर्ग स्थित संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ब्रजेश श्रीवास्तव, ललित कुमार त्रिवेदी, सीबी परगनिया, हेमंत कुमार साहू, चंद्रशेखर सारथी और गगन वासन का भी तबादला किया गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आज सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। कल भिलाई में अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ वैशाली नगर के विधायक ऋकेश सेन ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सेंटर भिलाई दुर्ग क्षेत्र की महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा या अन्य किसी भी संकट के दौरान पीड़ित महिला को भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आज प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 तक रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला तीसरा स्थान। और प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। विविध भारती कार्यक्रम का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारण हम करेंगे दिन के 11 बजे, दिन के 12 बजे और रात्रि 9 बजे। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से संध्या 6:05 पर हम अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी। यहीं से संध्या 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात का अनुप्रसारण किया जाएगा। सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। सुबह 10:30 का समय होगा फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश के प्रसारण का। चित्रपट संगीत सुनिएगा संध्या 5:30 पर। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे संध्या 6:20 पर, संध्या 7 बजे, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10 बजे। आज रात्रि 8:20 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। रात्रि 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी का। आज संध्या 5:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी हमारे गोड़ सुनेगा संध्या 5 बजे। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे संध्या 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा जायद मूंग उड़द में रस चूषक कीटों से बचाव के उपाय। अन्य नियमित क्रमों के साथ आज के चौपाल में आप सुनेंगे चर्चा संरक्षित खेती से लाए आर्थिक समृद्धि। ये चर्चा होगी आज की नसीहत के अंतर्गत। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल। 22 को की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत में भी अब समीर की रचना सुन रहे थे अदनान सामी के स्वर में।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव TV, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और

प्रोग्राम डिजिटल रेडियो गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी अपन अनुराग शर्मा को सुन रहे थे। रचना थी अनुराग शर्मा की। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है श्रोता साथियों की पसंद पर। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से है। मिश्रेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी गौशाला पर रायगढ़ से है। विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु और अंशु गुप्ता, आइए आप सबकी पसंद सुनते हैं फिल्म देवता का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के सुर में अभी आपने फिल्म देवता का गीत सुना। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत था राहुल देव बर्मन का।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आकाशवाणी 890 में आप सुनते हैं रेडियो श्रोता रोहित गुप्ता की प्रतिक्रिया।
6: नमस्कार, मेरा नाम रोहित गुप्ता है। हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हमें रेडियो से जुड़े हुए काफी वर्ष हो चुके हैं। मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ हमारा पूरा परिवार रेडियो के कई तरह के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। हमारे सुबह की शुरुआत रेडियो के द्वारा भजन से होती है, जिससे हमारे घर में एक आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। हम रेडियो के कई कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, जैसे चित्रपट, संगीत, विविध भारती, लघु नाटक, हास्य कार्यक्रम, युवाणी, बाल सभा। हमें सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है। इसके अलावा अतिरिक्त शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार और ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार में भी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातें बतलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त किसान वाणी चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि उन्नत कृषि कार्य, सरकारी योजनाएं, बाजार मूल्य और स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर ऑडियो सामग्री से मैंने व मेरे परिवार ने बहुत लाभ उठाया है। रेडियो के माध्यम से देश विदेश की दुनिया के अलावा स्थानीय मुद्दों समाचार भी बहुत अच्छे से सुनने को मिलते हैं। रेडियो विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिससे विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर हमें अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रेडियो ना सिर्फ मनोरंजन का साधन बल्कि यह लोगों को शिक्षित करने और अलग अलग विषयों पर जागरूकता फैलाने का भी एक प्रभावी माध्यम है। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आकाशवाणी इसी तरह अपनी मधुर ध्वनि से देश को प्रेरित करता रहेगा और नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। धन्यवाद।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे

0: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ,
1: समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं रॉबर्टसन दर्रामुड़ा से, लंबोदर प्रसाद पटेल, फैलेंद्र कुमार, तेजराम, सुरेंद्र कुमार, पीयूष, किशन, हेमंत कुमार, देवा, तुलाराम, राम खयाल, अरियन, रूप बसंत, हरिशंकर, मानस और विवेक कुमार पटेल। इंदिरा नगर भंवरपुर से हैं राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश और राजू देवांगन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ताजपुर मोरवा से हैं भाई कारी, रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। डोली साकरा से हैं जयंत कुमार बैरागी। धरसीमा से हैं छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल देवांगन, अनुराग, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव।

0: किशोर कुमार के सुर में भी अपने फिल्म मेरे जीवन साथी का गीत सुना। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था राहुल देव बर्मन का।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से इस समय आप सुन रहे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
6: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है इन श्रोता साथियों की पसंद पर। इंदिरा नगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल समीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से हैं चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्या। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मिका बिरक। मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। मेतरा से हैं सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी।

0: संगीत था शंकर जय किशन का।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म बेताब से। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं लोरमी चमेली छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। माटापारा दतरंगी से हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और छावेंद्र कुमार वर्मा। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलका, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम और चांदनी नाज। श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से हैं लक्ष्मण बाधवानी, बिमला बाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी और शुभम बाधवानी। इनके साथ है कन्हैया लाल तीर्थानी। ग्राम रुआ बाताड़ सनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के सुर में अभी अपने फिल्म बेताब का गीत सुना। गीत लिखा था अनिल बख्शी ने, धुन तैयार किया था राहुल देवबर्मन ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में यदि आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा के निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी रायगढ़, पिन कोड है 496001। आप अपनी फरमाइश हमें ईमेल से भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है srotarayagarh@gmail.com। आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में बस इतना ही, अनुमति दीजिए अपने रेडियो मित्र सुशील को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। दिन के 11 बजने को हैं। विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है
1: जी।
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या सुनाएंगे,
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की।
0: बिल्कुल।
1: तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं,
0: मैं नाम बता रही हूँ और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल
1: जी।
0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें
0: जी जी,
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्म
1: जी, लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था
0: जी।
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं मैं में ये सास बनी थी,
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर।
0: पिलगांवकर उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भादभड़े
0: जी।
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया,
0: मात्र 59 वर्ष की आयु
1: जी।
0: बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं
0: जी।
1: मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बड़जात्या
0: जी।
1: वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था वो।
0: जी हाँ, एक अर्बन नदिया के पार कह लीजिए
1: जी जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बड़जात्या के कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही
0: अच्छी स्टार कास्ट जबरदस्त जी।
1: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात परिवार की एक कमांडिंग
0: मदर हो। मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ,
1: ये बिल्कुल सही शब्द आपने पकड़ा
0: जी।
1: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई।
0: और कितनी हसीन लगी है उस फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू, और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए,
1: बिल्कुल तो गाना सुनते हैं उसके बाद बातचीत।

0: मनीषा जी, गाना तो आपने सुनवा दिया, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इनकी।
1: बिल्कुल, और रीमा जी की एक बहुत प्यारी बातचीत हमारे पास है।
0: तो फिर देर किस बात की?
1: बिल्कुल, बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने, तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू।
2: रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी।
2: जी जी।
3: मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो अच्छा। कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिनाकार गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था
2: जी,
3: जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी।
2: ये जो रेडियो का दौर है, ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है।
3: एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। अभी कॉम्पिटिशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है। ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आज,
2: यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है।
3: जुड़ा हुआ है बिल्कुल।
2: लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था?
3: वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहां से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज।
2: घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे?
3: हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्म में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया।
2: बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है?
3: जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ।
2: कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था?
3: एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो, एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है
2: जी,
3: यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं,
2: यू ग्रो करते हैं,
3: ग्रो करते हैं एज एन आर्टिस्ट, और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है। फिर
2: खाने पीने की कोई सुध नहीं और वो,
3: हाँ, एक वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी।
2: ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था?
3: ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके, या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई, वो था पुरुष करके, जयवंत दलवी जी का प्ले था, जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था।
2: बाद में उन्होंने दोबारा
3: वो हिंदी में हुआ
2: जी,
3: मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट आई कैन से।
2: वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना, लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी, शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूँ।
3: जी, मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था।
2: अच्छा।
3: तो इसलिए मुझे हंसी आई, रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था, ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी, और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो।
2: जी,
3: सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था, वो लगातार दोनों फिल्म मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी
2: जी।
3: उसके बाद अगेन देयर वाज अ बिग गैप।
2: लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थी।
3: हाँ, सिंहासन आई थी और 2-3
2: माझा घर माझा संसार।
3: हाँ, माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपट आई, ननंद भौजे आई थी, कह सकते।
2: तो आपकी मराठी सिनेमा यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी?
3: वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखीरा है, काफी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन, फिर ये ननंद जो अभी मैंने बताई, वही फिल्में मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया एंड देन।
2: और रंगमंच तो आपका चल ही रहा था?
3: हाँ, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था।
2: अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ?
3: एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में, उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा
2: जी,
3: और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में, तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग. तो मुझे पता नहीं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वॉज नरेटिंग मी द स्टोरी. मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे. बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे. मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है. तो बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा. आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो. तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं. एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट. एंड राजश्री पीपल, दे आर रियली वेरी नाइस पीपल. लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो.
2: जी.
3: तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है. तो ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है.
2: मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी.
3: जी.
2: और उसके बाद फिर एक
3: फस गई मैं. फस गई मैं.
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी.
3: मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है. हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है. सीरियस में थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो. बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील. लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है. बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है, जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है. तो
2: कैसे वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था?
3: मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है. बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ. एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की. व्हेनेवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट. तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है. तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं. एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं. एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चालसी बट उससे थोड़ा बढ़के, बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफियर. टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफियर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैंने देख चुकी थी मैं जहाँ रह रही थी, तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं. या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली.
2: जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से
3: निकला है,
2: बाहर आया, तो कैसा लगा?
3: अच्छा लगा. बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये रोल का ग्राफ है. वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है. तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस वक्त पता चलता है. बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है. देन वी टेक द प्रिकॉशन की पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो. तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे. काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा. जब आपने, आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि
2: अभिनेत्री एक तरफ हो गई और कैरेक्टर आगे आ गया.
3: कई लोगों का ऐसा कि नहीं नहीं, माँ है, मार कैसे सकती है. अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल.
2: अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं, जो आपके अपने दिल के करीब हैं?
3: आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत के. बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम जगह मिलता है. तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था. बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है.
2: जी.
3: और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली माणसं करके था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा.
2: किस तरह का रोल था?
3: इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है.
2: रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं?
3: मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है, और हिंदी फिल्मों का संगीत या मराठी गाने, बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त. तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी, तो क्लासिकल अच्छा लगता है. और लाइट
2: आज भी शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं आप?
3: कभी कभार, नॉट एवरी टाइम बट कभी कभार अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ। किशोरिया मुनकर जी का गाना मैंने सुना है, देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है, काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है उनके गाने। भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है जो मुझे बहुत ही, यानी वो एक प्रेरणा मिलती है उनका गाना सुन, उनकी जो आवाज है ना उससे अंदर हो जाता है एंड यू गेट द स्ट्रेंथ।
2: बिल्कुल भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो
3: जी, बिल्कुल मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ।
2: आइए एक गीत सुन लिया जाए।
3: जी बिल्कुल, भीमसेन जी का एक अमोल जी की फिल्म थी अनकही,
2: हाँ
3: उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना है।

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं?
1: सच में।
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन
1: जी,
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे वो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्रदराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का
0: जी।
1: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं।
0: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको। फिलहाल उस म्यूजिक को सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आ जाएगा।

0: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
1: ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन, और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था, और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित हो जाएंगे।
2: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था, और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे, और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था, और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुका शुरू से रहा, और ये गीतकार बनना चाहते थे
1: जी।
2: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए, क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी, आप बेहतर जानते हैं।
1: गढ़ था उस समय फिल्मों का
2: जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय, वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी, और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं, और वहां से ये आ गए मुंबई, और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब, जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब लोग जानते हैं उनको,
1: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
2: और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रूपए से शुरुआत हुई थी इनकी।
1: 35 रूपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन ने लिखे थे, और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे। एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे, और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
2: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी, और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
1: क्या बात है,
2: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
1: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
2: ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है, और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
1: जॉनी मेरा नाम
2: जी,
1: उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को,
2: राय साहब भूपिंदर सिंह
1: जी,
2: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है
1: जी। हाँ,
2: वो
1: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है,
2: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी,
1: याद दिलाइए,
2: चलती का नाम गाड़ी।
1: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार
2: जी
1: सज्जन साहब का था, और थोड़ा सा जी हाँ थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
2: बिल्कुल
3: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट से या कि हीरो से, आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
4: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया, और फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे, नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुड्ढे हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
3: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
4: बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे

0: बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था और इत्मीनान से फिल्म बनती थी, तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो कि वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे। और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ दो घंटे तीन घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में पांच छह जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी आया है, अभी घंटे डेढ़ घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके वन मैन शो करते हैं अपने, मतलब एक शो करते हैं, समझो कि छह आठ महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है, शाइलॉक भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं, समझे गुरुदेव टैगोर क्या करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं, हमने अब तक 74 शो किए हैं, समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए, वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़, इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूं और न ये उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहां कुछ होने वाला।
1: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
0: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस ये
1: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिली, थिएटर में या कि फिल्मों?
0: हमेशा थिएटर में, हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे, समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय, समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय।
1: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल, तकरीबन 90% लोग हैं, वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
0: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है, समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है, समझे, और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग, मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर, समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है, समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है, समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
1: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में देखिए
1: पोएट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
0: ये भी लिखता हूँ, इसमें कहते हैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं, समझे। हम शुरू शुरू में, मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर के तौर पे आए थे। फनी मजुमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे।
1: समझे, आप क्या क्या करते थे?
0: क्या कमाल है, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है, समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था 1962 की बात है शायद, समझे, उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं, समझे, और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं, ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है, तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता,

0: करता हूँ और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ, तो हम अपना जी बहलाते रहते हैं, समझे? तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, समझे? और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, समझे? तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
1: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा।
2: जी, बहुत अच्छा लगा।
1: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया।
2: जी हाँ।
1: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
3: सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
2: श्रोताओं, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनके रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
1: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि ढंटन टन, वो फिल्मों में नहीं होता, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
2: आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
1: ये उस दौर की फिल्म है ना।
2: जी हाँ।
1: कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, फिर क्या होता? क्या होता, अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है और उसके बाद क्या, ढंटन टन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे। हाँ। सुनते थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो ढंटन टन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी।
2: जी हाँ।
1: और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
2: बताइए।
1: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।
2: बात है, बहुत प्यारा गीत है।
1: ना मानता ना रूठता, ना बार बार हंसता, ना जार जार रोता।
2: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
1: जी,
2: सुनना पड़ेगा और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
1: तो चलिए सुन लेते हैं।
4: अगर

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह, बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर, सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, यह अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश
1: मेहरा साहब का, और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने, मनीषा जी
0: जी,
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं, फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे, उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी,
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल, और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो था, और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
0: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आप की जबान से।
1: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में, मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया,
0: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
1: मनीषा जी, फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
0: बिल्कुल,
1: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
1: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
0: जी।
1: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
0: जी।
1: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जलों का,
0: दिल जला के,
1: प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया, एक और था गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
0: आप ही बता दीजिए ना।
1: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
0: क्या बात है,
1: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
0: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
1: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मधुर रोमांटिक फिल्मों का हीरो
0: जी।
1: तो उन्होंने इनकार कर दिया।
0: हाँ।
1: अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की
0: जी।
1: अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने, सलीम साहब ने उनसे।
0: अच्छा।
1: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए, और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
0: जी,
1: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
0: यही मुंबई में,
1: मुंबई में, और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
0: जी।
1: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे, तब जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले, और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
0: क्या बात है, कहां से कहां, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
1: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार
0: जी। हाँ।
1: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
0: मनोज कुमार,
1: उसमें खान का किरदार था।
0: अच्छा।
1: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे। और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
0: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओ, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अभी सुनवाएं इस रिकॉर्डिंग को।
1: बिल्कुल।
0: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी ने।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थी, ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलना। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को, मेरी ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, सब वहाँ दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे, वहाँ मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला, तो विनोद ने बोला कि मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
2: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
3: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
2: तो प्रकाश जी, आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री
3: आए थे राइटर बनने? अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वही हमारी फिर दोस्ती हो गई, काम करते करते मोहन सहगल के और उसके, तो हमारे दोस्त थे इंदुभूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदुभूषण से दोस्ती हो गई। इंदुभूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदुभूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदुभूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे एक साल मोटरसाइकिल के साथ और काम करने दो, विल मेक ए फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से मोटरसाइकिल के, वहां से एसएम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब एक साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। एक साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदुभूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जो मोटरसाइकिल के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फिएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोटरसाइकिल का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा, यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता, जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज्ड टू बिलीव इन डेस्टिनी, कि आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है। हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी की रिलीज के 1 महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांद्रा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वॉकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, हसीना मान जाएगी भी वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो अपने घर से लाके हमें देते थे, बोले मगर 1 हफ्ते में ले लूंगा और हम 1 हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वॉकर से पूछा कि एक ऑफर है नडियाड वाले की, एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी 4 ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है, एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले।
2: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने।
3: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
2: जी,
3: बिकॉज आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
2: तो ये जो जंजीर की हम बात करें,
3: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
2: जी,
3: बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उनकी सारी उम्मीदें थी। वो भी रंजन की फिल्म बंदेहाल बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत है, तो फिर मैंने जया से बात की, जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा

0: के हाथ पर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे तो नहीं। मैंने केदार कपूर को बोला वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली इंस्पेक्टर और पठान के आगे? बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं।
1: अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण कल 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वामी पर्व पूरे देश में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1,136 सहित कुल 1,228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में 3रा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 354 करोड़ रुपए के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर को कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड स्थित पांडा तराई पहुंचेंगे, जहां वे डोंगरिया खरहट्टा में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा।

प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश में इन दिनों आयोजित सुशासन तिहार के तहत जगह जगह शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 11 मई को रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: दिया हरे हरे कान्हैया जा कान्हैया जा कान्हैया।
1: तेल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत पथ किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
2: एक बेमिसाल शायर
3: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
2: एक शानदार शख्सियत
4: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
2: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
4: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
2: कुछ बेमिसाल किस्से
4: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये

0: किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कित

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी, इस फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, दिन का एक बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय। कितना मिलता जुलता है ये समय, और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफ़र में। तो सुरीले सफ़र की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता संवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतज़ार। तो यह है आज की इबारत, और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफ़ी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मज़ेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखें इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफ़र हो सकता है। पर आपके गीतों का हमने इंतज़ार किया, एक आधी गीत दिखा, सारे गीत तो हमें नज़र नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इबारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत, बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का, दिल, नगमा, फसाना, कौन सा वही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतज़ार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा

रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में, बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं, जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है, जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी और पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही हैं कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है, समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। हा हा हा, क्या बात है, ये तो बस आनंद का संवाद नहीं हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफ़र पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं। देखिए तो ज़रा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है, सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का ज़माना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। वो संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, ज़िंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है ज़िंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूर्त माँ, सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह बिल्कुल सही है, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफ़र। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है, ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर, जो बहुत ही ख़ास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा, जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:30 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी, जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज़ घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान, मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज़ आवाज़ में टन की आवाज़ होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिकटिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज़ और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियाँ भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया, सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर, लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज़ पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और ज़रा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया है कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज़ बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना ज़रूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में ख़राब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रास्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फ़ोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नज़र रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहती है कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मज़ा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात है। अपनी HMT के रिस्टवॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी HMT की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं।

था, पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे, तो मैंने बोल दिया 10 बजे इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे, और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन्होंने उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज़्यादातर घड़ियाँ रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी। अलार्म घड़ी रहती थी, जब मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया है कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूँ क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।

का बुलबुल के बिया कोने को है आज फूलों का बुलबुल के बिया।

0: बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी, क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूँ तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफ़र पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा, क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए ज़रा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

0: मंगल में मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भलाई हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ वीजा वगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आँखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में से ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता, प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज़्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ, और चमकती आंखों से प्यार छलकाती, मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियाँ, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियाँ हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदायी होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आँखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुँह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है। बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है। इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

इस जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण

0: अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज़ में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

हा हा हा ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी न देख तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या मुझको भी अब

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।

0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

फोन हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। अरे 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे, होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वही है जाना। क्या पिताजी और क्या माता।

मोहम्मद रफ़ी का गाया औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए।

0: कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुंचेगी।
1: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
0: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
1: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
0: जी आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
1: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
0: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: मेरी बात याद रखोगे ना?
0: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
2: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
3: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
2: लखपति? अरे क्या कह रहा है?
3: ये जरा गंभीर मामला है। हाँ? देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
2: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है। अब सच कह दे, नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
3: है, बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
2: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
3: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
2: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
3: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
2: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
3: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा। कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
2: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?

0: लो तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव का मिया अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों भीड़ स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए।

0: माँ जी
1: आओ कंदे स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यो ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है?
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत

0: देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
1: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
0: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
1: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
0: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी, आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावटी नहीं, असली मूछें हैं, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम, हेलो, हाउ डू यू डू, यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछें और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूर अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है।

0: उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूं।
1: माजी
2: है? ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंधे स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? नहीं!

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब?
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ये है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए।
4: इंस्पेक्टर साहब, इसी शिंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तभी ये कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश शिंगारम भाग नहीं पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या सिंगारम को खून करते हुए देखा था?
4: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, तो सिंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये शिंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूं? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे सवेरा।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी,
1: ये पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइने भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया, और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे, वहाँ
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डार्क करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो ये प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, आप ऐसे आए वहाँ पे। तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन।
1: सागर साहब लिख रहे थे?
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: अभी इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब
0: गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: शूटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते थे बाजा लेके आते शूटिंग, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीज़ें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: शायद वो, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखें और गाने भी लिखें, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है, जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: हाँ लूँगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूँगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब था। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं
1: है। बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिए हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए, वो मान गए, यश जोहर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोहर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे हैं,
0: कहानी ढूंढ रहे हैं क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो उसका ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज अ राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं कभी पिक्चर बना दे, वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब का
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी सॉरी, शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहाँ चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहाँ से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ तो मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 34 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो उसका सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,
1: ये ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी झुककर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब
0: जी। जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी झुककर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी झुककर ने
0: दिलीप साहब को बता दी। ओहो, गजब।
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह, क्या बात है।
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो वहाँ के थे, पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी, जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले यारा।
0: अच्छा,
1: यारा
0: जी, इसीलिए वो सागर यारा किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा।

0: करूँगा, वो तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा। सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर साहब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये तो नहीं हो सकी और डेटें पोस्टपोन करूँगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे, अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों ज़रा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों, चाहे चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रामनाड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए।
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज़्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी हिट हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो के, जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए आप, बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी।

विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी हम कर रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, सस्कालो, पंडोपारा, सुखरी भंडार, कोरवापारा, बरपारा, कठबुड़ा, कंडराजा, बैरडाण, पतरापारा, दांतीढाब, घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आम गांव, पोटिया, क्रोंधा, प्रेमनगर, बेहरामार, औरानारा, कुड़ेकेला, सिंघी छाप, डोंगा भावना, हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली, पथरीपाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझड़, डडईपानी, नगरार, खोलापारा, जिडार, छिंदौला, तौरेंगा, कावारामा, डूमरघाट, कोदोमाली, कोनारी, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धमतरी वन मंडल के दुगली में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चार गांव जबर्रा, तुम्बहरा, डूंगरडूला, गज कन्हार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे।
0: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 5:05 हुए, सुनिए कार्यक्रम विवरण। भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे 5:10 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे 5:30 पर। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी 6:05 पर और 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 6:20, 7:00, 8:30 और रात 10:00। 10:30 पर प्रस्तुत करेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम चौपाल लेकर आएंगे 7:20 पर। कार्यक्रम में आज के बाद का विषय रहेगा जायद मूंग उड़द में रस चूसक कीटों से बचाव के उपाय। नसीहत में सुनेंगे संरक्षित खेती से लाएं आर्थिक समृद्धि। गैर फिल्मी गीत होगा 8:20 पर।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: श्रोताओं, कल सुबह 6:05 पर सुनेंगे चिंतन, वंदना 6:10 पर होगा, कृषि चर्चा का समय रहेगा 6:30 का, रामचरितमानस 6:40 पर प्रस्तुत करेंगे, देश का नाम सुनेंगे 6:50 पर, चित्रपट संगीत लेकर आएंगे 7:05 पर, हमारे केंद्र से 7:30 पर सुन सकेंगे रेट्रो रायगढ़, पूर्व में प्रसारित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष कार्यक्रम, लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर होगा 7:45 पर, उपशास्त्रीय संगीत 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे, सुगम संगीत आप सुनेंगे 10:10 पर, आपकी फरमाइश लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे, सुबह 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात 9 बजे, कल शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनेंगे, शाम में गजल होगा 5:10 पर, युवाड़ी आप सुनेंगे 5:30 पर, कार्यक्रम चौपाल 7:20 पर लेकर आएंगे, रात्रि 10:30 पर अनुरोध आप सुन सकेंगे, विविध संगीत सुनेगा रात 10 बजे, गैर फिल्म गीत का वक्त रहेगा 8:20 का, फिल्म संगीत 6:20, 7 बजे और रात्रि 8:30 पर सुन सकेंगे। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 MHz पर, 5:10 हुए हैं, प्रस्तुत है भजन संध्या कार्यक्रम में, आइए सुनते हैं लक्ष्मी शंकर की आवाज में इस भजन को, जिसे लिखा है सूरदास ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
1: मेरे रे

0: रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: मंगल भवन मंगल हारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: ब्रह्मानंदम के लिखे इस भजन को आइए सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज में।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्रा की आवाजों में इस भजन को, जिसे लिखा था गुरु नानक ने। इसके साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौड़, अलका याग्निक की आवाजों में बाजीगर फिल्म के इस गाने को, जिसे लिखा है गौहर कानपुरी ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।

0: पिछले महीने तो ली थी, एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
1: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
5: श्रोताओं, संदेश से पहले ही आप सुन रहे थे मेजर साहब फिल्म के गाने में उदित नारायण को आनंदराज आनंद ने संगीत से सजाया था। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था। कार्यक्रम में अब सुनिए कयामत से कयामत तक फिल्म के इस नगमे को उदित नारायण अलका याग्निक की युगल आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: Oh, lovely. Well done.
0: Business loan approved.
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया था, जावेद अख्तर ने गीत लिखा था। कार्यक्रम में आप सुनिए अभिजीत की आवाज में अंजाम फिल्म के गाने को। शब्द हैं समीर के, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

अभिजीत के गाइस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त तो होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया।

0: वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। NTA ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। NTA ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। इसमें आज आप सुनेंगे बालोद जिले की चिट्ठी। आलेख है जयप्रकाश सिन्हा का।
2: नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बालोद जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत बालोद जिले में 1 मई से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान प्रगणक लोगों के घर घर जाकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जिला कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने मकान सूचीकरण का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करने वाले 50 प्रगणकों को संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये भविष्य की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण का आधार है। श्रोताओं, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में भी 1 मई से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 7 मई को गुरूर विकासखंड के पलारी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 256 में से 73 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को ध्वनि श्रवण यंत्र और छड़ी का वितरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को निक्षय पोषण आहार और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं अर्जुनी गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में अर्जुनी क्लस्टर में शामिल 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने ग्रामीणों को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी।

0: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने बीते 2 मई को बालोद जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं ग्राम सिवनी में संयुक्त जिला कार्यालय के पास निर्माणाधीन जिला और सत्र न्यायालय के भवन में अधिवक्ता कक्ष के दायरे को बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। श्रोताओं, जिले के डोंडी, भरीटोला और कुआगोदी लघु वनोपज सहकारी समिति में 4 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। जोनल अधिकारी और रेंजर जीवनलाल भूंडेकर ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 प्रति मानक बोरा मजदूरी निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने संग्राहकों से कहा है कि वे 50-50 पत्तों के बंडल बनाकर तेंदुपत्ता फड़ों में जमा करें। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बालोद जिले के छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 10वीं में करीब 66% और 12वीं में 77% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अर्जुंदा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र जीत गजेंद्र ने 95% अंक हासिल कर जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उमरादाह स्थित ब्लेज अकेडमी की छात्रा वंशिका शर्मा 10वीं की परीक्षा में 97.17% अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रही हैं। जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिला स्तरीय टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं के अलावा उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। श्रोताओं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद जिले की हिमांशी साहू ने राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। हिमांशी कन्नेवाड़ा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। जिला कलेक्टर ने इस उपलब्धि पर जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हिमांशी को सम्मानित किया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे बालोद जिले की चिट्ठी। आलेख था जयप्रकाश सिन्हा का। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। केंद्रीय गृह मंत्री ह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करिन औ केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करिन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडीह ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। मंदिर में 9 मई ले ही 3 दिनी होतात्मक महारुद्र यज्ञ के आयोजन करे जावत है, जेमा लगभग 1,25,000 आहुति चढ़ाए जावत है। ये महायज्ञ अभी के वैश्विक परिस्थिति में शांति और मानुष कल्याण बर करे जावत है। अमृत पर्व के मुख्य आकर्षण काली 11 मई के होही, जब मंदिर के शिखर में प्रधानमंत्री डहर ले 11 पवित्र तीर्थ ले लाए गए जल ले कुंभाभिषेक करे जाही। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरा देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाए जावत है। एकरे अंतर्गत काली 11 मई के बालोद जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा बताएं कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में होवैया ये कार्यक्रम है श्रद्धा संस्कृति और हमर देश के विरासत के सुघर संगम देखे बर मिली। उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बलरामपुर जिला के ऐतिहासिक स्थल डीपाडी सामंत सरना में घलो काली स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। ये कार्यक्रम नवा पीढ़ी में सांस्कृतिक जन जागरूकता और स्वाभिमान के भावना ला मजबूत करही। प्रदेश में

0: या नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव बर नामांकन के कार्य काली 11 मई ले शुरू होही, जेन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र मन के जांच 19 मई के करे जाही। उम्मीदवार मन 21 मई तक अपन नाम वापस ले सकी। वोटिंग ह एक चरण में 1 जून के होही, जेकर परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। सुरैया मल्ला बता दन कि नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 पद समेत कुल 82 पद पर चुनाव होही। उहें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1126 समेत पूरा 1228 पद पर चुनाव होही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे के देश के तैयारी के समीक्षा बैठका करीन है। नई दिल्ली में आज एक बैठका में श्री शाह सरकारी एजेंसी मन के तैयारी के आकलन करीन, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, संसाधन के तैनाती और एजेंसी मन के बीच तालमेल के समीक्षा करीन। गृहमंत्री ह अवैया समय पर करे जावत बाढ़ निवारण उपाय के प्रगति के घलो समीक्षा करीन, जेमा जरूरी ढांचागत परियोजना के बचाव, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठका में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान ल रोके बर निर्माण, जरूरी राहत सामान और इलाज के तैयारी बर पर्याप्त भंडारण ल पक्का करे ऊपर गोट बात करेगी। प्रदेश में अभी आयोजित होवत सुशासन तिहार के तहत जगह जगह समाधान शिविर लगा के लोगन के समस्या ल मौका में ही निराकृत करे जावत है। यही कड़ी में काली 11 मई सोमवार के रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाही। एमा बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1 बजे तक आवेदन झोंके जाही। छत्तीसगढ़ में आने आने न्यायालय में काली लोक अदालत के आयोजन करेगी। एदारी के लोक अदालत में 7,92,000 ले ज्यादा मामला के आपसी समझौता ले निराकरण करेगी। उन्हें 52,14,00,000 रुपया ले ज्यादा के राशि के अवार्ड पारित होइस। लोक अदालत के शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ह मुंगेली जिला न्यायालय ले करिन। ए मौका में प्रदेश के सब्बो जिला वर्चुअल माध्यम ले जुड़े रहिस। शिविर भारतीय भाषा मन में गोटबात के तरीका सीखे, शब्द ल जाने, अपन परिचय देना, असल जिंदगी के बातचीत और संस्कृति के बड़े ऊपर केंद्रित होही। एकर उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण ल बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेता मन के घोषणा कर दे है। देश भर ले चुने गए 42 ठन पंचायत ल ए इनाम दे जाही। पंचायती राज मंत्रालय ह बताइस है कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 3 जून के नई दिल्ली में रखे जाही। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के बगीचा तहसील के सरडी ग्राम पंचायत ल स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में तीसरैया स्थान मिले है। मंत्रालय ह बताइस कि विजेता पंचायत मन ल श्रेणी और स्तर के आधार में 50,00,000 रुपया ले लेके 5,00,00,000 रुपया तक के वित्तीय प्रोत्साहन मिली। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दे जावत है। धमतरी जिला के भटगांव ह जल्दी च राज्य के पहली अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनाया है। कलेक्टर के पहल में यहां रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करे जाही। ए केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और तुरते रोग निदान के सुविधा मिली। खास खास नस्ल के छेरी ल बचाए और बढ़ाए बर घलो काम करे जाही। किसनहा और युवा मन पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। पहली चरण में 10 ले 12 स्थानीय युवा मन ल रोजगार मिली और पशु सखी मन ल तकनीकी प्रशिक्षण दे के उमल्ला आत्मनिर्भर बनाए ऊपर विशेष जोर दे जाही।

0: बिलासपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ह सक्ती जिला के चंद्रपुर थाना में पदस्थ एएसआई एसएन मिश्रा ला 20,000 रुपया के घूस लेवत रंगे हाथ पकड़े हे। आरोप है कि एएसआई ह बालपुर के रहिया एक झन मनखे ला कड़ा कार्रवाई ले बचाए बर 40,000 रुपया के रिश्वत के मांग करे रहीस। आज मदर्स डे में रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन हा महिला बंदी मन बर वीडियो कॉलिंग के सुविधा शुरू करे हे। ए सुविधा ले अब महिला बंदी मन अपन परिवार और वकील ले सीधा वीडियो कॉलिंग ले गोट बात कर सकी। वीडियो कॉलिंग सुविधा बर जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच अनुबंध हो है। उन्हें आज जेल परिसर में होए निश्चय कार्यक्रम में कौशल विकास के प्रशिक्षण पूरा करैया 38 महिला बंदी मन ला प्रमाण पत्र दे गईस। संगे संग जेल में अपन महतारी संग रहत 14 झन लैका ला विभाग कोती ले खास उपहार घलो दे गईस। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ह प्रदेश के जम्मो महतारी मल्ला मातृदिवस के शुभकामना दिन हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेले जाही। ये मैच संझा 7:30 बजे ले शुरू हुई। उन्हें 13 मई बुधवार के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होही। दोनों आईपीएल मैच पर प्रशासन ह सुरक्षा के कड़ा तैयारी करे हे। अब जानथन मौसम के हाल। मौसम विभाग ह काली 11 मई के प्रदेश के एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना जताए हे। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गर्रा चले और गाज गिरे के चेतावनी दे हे। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा के एक चक्रीय चक्रवाती घेरा ह मन्नार के खाड़ी और ओखर ले लगे श्रीलंका के ऊपर फैले हे। एकर अलावा एक ठन निम्न दाब के क्षेत्र ह दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी के ऊपर अवैया 48 घंटा में बने के संभावना है। एकरे असर ले काली प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का वर्षा हो सकत है। आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग ली। केंद्रीय गृह मंत्री ह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करिन और केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करिन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडी ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 हुए हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। अनाड़ी फिल्म के गाने को लीजिए सुनिए अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। आनंद मिलिंद ने संगीत से सजाया है। गीत के बोल हैं समीर के।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है?
0: है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: के बाहर
1: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
7: देश की सुरीली धड़कन
8: विविध भारती,
6: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
7: कुछ बातें कुछ गीत
6: जरा, और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
7: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
6: मन का सुकून, दिल की आरती,
7: सुरीली संदली।
9: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में आवाजों में अनाड़ी फिल्म के गाने को। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम कानून की बात। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
10: 30 मिनट हुए हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, कानून की बात। लीजिए इसमें सुनिए उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी। विशेषज्ञ हैं सिस्टम जिला एवं अपर न्यायाधीश सुश्री मनीषा ठाकुर। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति है।

0: कानून की बात कार्यक्रम के आज के इस नवीन अंक में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती मनीषा ठाकुर जी। आप जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में सिस्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ होकर न्यायदान का कार्य कर रही हैं। मैडम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार, सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम आपसे सर्वप्रथम यह जानना चाहेंगे कि उत्तराधिकार से आशय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, कृपया सविस्तार बताएं।
1: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, अधिकार और दायित्व उसके उत्तराधिकारियों को मिलने की प्रक्रिया को उत्तराधिकार कहते हैं
0: जी।
1: यह अधिनियम हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख पर लागू होता है। हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को समान, न्याय संगत और व्यवस्थित बनाना इसका उद्देश्य है। यह अधिनियम 17 जून 1956 को लागू हुआ था।
0: जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति के संबंध

0: संपत्ति कहा जाता है।
1: जी।
0: यदि कोई व्यक्ति अपनी स्व अर्जित संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का निपटारा उसके वसीयत के अनुसार किया जाता है। आगे श्रोतागण जानना चाहेंगे कि वसीयत क्या है, तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण के बारे में निर्देश देता है। वसीयत रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है तथा दो गवाहों से प्रमाणीकृत कराया जाना भी आवश्यक है।
1: जी हाँ।
0: अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी व्यक्ति को उसके पिता, दादा या परदादा से जो संपत्ति वारिसान हक में मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके पैतृक संपत्ति का वितरण या विभाजन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत दिए गए नियमों के अनुसार होता है।
1: जी।
0: यहाँ पर उल्लेखनीय है कि महिलाओं व पुरुषों की संपत्ति का वितरण अलग अलग नियमों के अंतर्गत होता है। हिंदू नारी की दशा में अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत उसकी संपत्ति का वितरण होगा। जैसे यदि उसकी निर्वसती मृत्यु होती है तब अधिनियम की धारा 15 के अनुसार पहले क्रम पर उसके पुत्र, पुत्री, पति वारिस होते हैं, दूसरे क्रम पर उसके पति के वारिस आते हैं, तीसरे क्रम पर माता पिता को और चौथे क्रम पर पिता के वारिसों को और अंत में उसके माता के वारिसों को संपत्ति वितरित या न्यायगत होती है।
1: जी हाँ।
0: यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हिंदू नारी की संपत्ति जिसे उसने चाहे जिस प्रकार से भी अर्जित की हो, जैसे विरासतन हक में, विभाजन में, भरण पोषण के बकाया के रूप में, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, दान पत्र या अपने कौशल या परिश्रम से क्रय की हो, स्त्री धन के रूप में मानी जाएगी और उक्त संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है जिसे वह किसी को भी दान, विक्रय या वसीयत कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: यदि कोई पुरुष की निर्वसती मृत्यु होती है तब उसकी संपत्ति का वितरण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत दिए गए नियमों के अंतर्गत होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया। हिंदू सक्सेशन संशोधित अधिनियम 2005 समझने के लिए हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को समझना होगा। धारा 6 हिंदुओं के सहदायिक संपत्ति के हित, अधिकार और वितरण या न्यायगमन संबंधी नियम है। इसमें सहदायिक संपत्तियों में हिंदुओं के अधिकार, हित का वितरण या न्यायगमन किया जाता है।
1: जी।
0: इस धारा के तहत पूर्व में सहदायिक संपत्ति पर जन्म से केवल पुत्र को ही अधिकार या दायित्व दिया गया था। इस धारा की विशेषता को समझने से पहले मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व की स्थिति पर प्रकाश डालना चाहती हूँ।
1: जी हाँ।
0: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व ओल्ड हिंदू विधि लागू था जिसमें यदि किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसके सहदायिक संपत्ति को उसके पुरुष वारिसों में ही वितरित किया जाता था। दूसरे शब्दों में केवल पुरुष वारिसों को उसकी सहदायिकी या पैतृक संपत्ति पर हक अधिकार मिलता था। इस प्रकार उस व्यक्ति की विधवा को उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था।
1: जी।
0: बाद में हिंदू महिला का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1938 लाया गया। हिंदू महिला का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1938 के तहत विधवा को अपने पति की संपत्ति पर भरण पोषण का अधिकार मिला, जिसके तहत वह सिर्फ जीवन पर्यंत उस संपत्ति पर अपना तथा अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती थी। इस अधिनियम में कुछ कमियां थी। विधवा अपने पति की संपत्ति पर अपना खर्चा चला सकती थी पर उसे बेच नहीं सकती थी। इसके बाद आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस अधिनियम में भी कुछ कमियां थी जिसे दूर करने के लिए बाद में लाया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसके द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में व्यापक बदलाव हुए। सहदायिक संपत्ति में पुत्रियों को भी सहदायिकी माना जाने लगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में जो दिशा निर्देश दिए थे उसके बाद धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में व्यापक बदलाव किए गए। इस बदलाव के बाद बेटी को भी सहदायिक संपत्ति पर पुत्र के समान जन्म से अधिकार दिया गया। इसके लिए पिता का जीवित होना अब आवश्यक नहीं रहा। यदि बेटी की शादी हो जाए तब भी उसका यह अधिकार समाप्त नहीं होता है।
1: जी हाँ।
0: अधिनियम 2005 20 दिसंबर 2004 से पहले जिस संपत्ति का विभाजन हो चुका है उस पर लागू नहीं होता है। अब इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। जैसे किसी रजिस्टर्ड विभाजन पत्र के जरिए संपत्ति का विभाजन 2004 के पूर्व हो गया है, उस समय पुत्री को सहदायिक नहीं माना गया था, इसीलिए 2005 के संशोधन का लाभ पुत्री को नहीं मिलेगा। अर्थात 2005 के पूर्व पुत्री संपत्ति में बंटवारा नहीं मांग सकती थी। पिता की मृत्यु

0: पर उसे अपने पिता के अंश में से ही शेष वारिसों के साथ हिस्सा मिलता था, जैसे पत्नी पुत्र माता के साथ पुत्री को अंश मिलता था। इस प्रकार 2005 के संशोधन के पूर्व पुत्री को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर पिता की मृत्यु पर ही अंश मिलता था, किंतु 2005 के बाद पुत्री को सहदायिक संपत्ति पर पिता के पुत्र के साथ बराबर बराबर हक प्राप्त होने लगा। वह अपने मैके के सहदायिक संपत्ति पर बंटवारा भी मांग सकती है। इस प्रकार यह संशोधन केवल कानूनी बदलाव नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक समानता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
1: बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपके द्वारा हम सबको प्राप्त हो रही है। उत्तराधिकार से संबंधित तकनीकी पहलुओं और क्लिष्ट विधिक प्रावधानों के बारे में हमें कृपया विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करें।
0: जैसे अधिनियम में एक शब्द बहुत यूज होता है, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या सहदायिक संपत्ति पैतृक संपत्ति को ही कहा जाता है, किंतु वो संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है
1: जी।
0: समानता पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि पार्टीशन के बाद हिस्सा अलग हो जाता है तो व्यक्ति अपने हिस्से को वसीयत कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का कोई वारिस न हो तो उसकी पूरी संपत्ति शासन को चली जाती है। दत्तक संतान को भी जैविक संतान के समान प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, किंतु अवैध संतान को केवल अपने पिता के स्वर्जित संपत्ति में ही सीमित अधिकार मिलता है
1: जी।
0: इसी प्रकार वारिस आते हैं जो किसी निर्वसती की मृत्यु पर उसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, उन्हें वारिस कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वारिसों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्लास वन के हेयर्स, इसमें पत्नी पुत्र पुत्री माता मृत संतान के बच्चे आते हैं। दूसरा है क्लास टू के हेयर्स, इसमें पिता भाई बहन आते हैं। तीसरा है गोत्रज और चौथा है बंधु।
1: हम यह भी आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ तकनीकी अवधारणाएं हमको सुनने में मिलती हैं, जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, सपिंड, सहगोत्र, बंधु एवं निषेध प्रावधान। इसके बारे में भी सरल शब्दों में हमें बताएं।
0: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जिसे मृतक के वारिसान न्यायालय के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसमें मृतक के कर्ज व प्रतिभूतियां उनके वारिसों को प्राप्त होती है
1: जी।
0: इसी प्रकार प्रोबेट होता है, ये भी एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें यह साबित होता है कि वसीयत वैध है और उसे लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार गोत्रज पिता से जुड़े रिश्तेदारों को कहते हैं, जैसे पिता के भाई का पुत्र गोत्रज कहलाता है। इसी प्रकार आता है बंधु। बंधु माता से जुड़े रिश्तेदार को भी कहते हैं और पिता से जुड़े रिश्तेदारों को भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मामा का पुत्र बंधु कहा जाता है। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति संपत्ति से वंचित हो सकते हैं जो हत्यारा हो या जिसने अपना धर्म बदल लिया हो
1: जी।
0: उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है।
1: बहुत ही सरल शब्दों में अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में हमें आपसे यह बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो रही है। हिंदू व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबी व्यक्तियों के संबंध में उत्तराधिकार विधि के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं?
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत बहु धार्मिक देश है। यहाँ कई प्रकार के पर्सनल लॉ प्रचलन में है, जिसमें मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन पर्सनल लॉ मुख्य हैं। मुस्लिम विधि की बात करें तो मुस्लिम विधि केवल मुसलमानों पर लागू होती है, इसके अधिकांश भाग अनकोडिफाइड हैं। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है, उसके जीवित रहते उत्पन्न नहीं होता है
1: जी।
0: संपत्ति का बंटवारा कुरान और शरीयत के नियमों के अनुसार होता है। वारिसों के हिस्से पहले से ही निर्धारित होते हैं। व्यक्ति की मृत्यु पर पहले उसके कफन दफन का खर्च, यदि उसका कोई पूर्व कर्ज हो या उसने कोई वसीयत किया हो तो उसका एक तिहाई भाग पहले उसकी संपत्ति से निकाल लिया जाता है, फिर शेष भाग का बंटवारा होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल एक तिहाई भाग ही वसीयत कर सकता है। मुस्लिम विधि में वसीयत लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है तथा उसे पंजीयन कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल वसीयत स्पष्ट होनी चाहिए। एक तिहाई से ऊपर की वसीयत किए जाने पर सभी वारिसों की सहमति आवश्यक है
1: जी।
0: मुस्लिम विधि में हिंदुओं के समान ज्वाइंट फैमिली की कोई उपधारणा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वतंत्र मालिक होता है। परिवार के सदस्यों का उसकी संपत्ति पर जन्म से कोई अधिकार नहीं होता है। मृत्यु पर ही वारिसों को अधिकार मिलता है। इसी प्रकार क्रिश्चियन लॉ में व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा

0: शख्सियत के अनुसार कर सकता है। इसमें व्यक्ति को विल करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। मुस्लिम विधि के समान फिक्स्ड शेयर नहीं होते हैं तथा भारत में क्रिश्चियन उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा नियंत्रित होता है।
1: जी।
0: बिना वसीयत किए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी विधवा को एक तिहाई तथा उसकी संतानों को दो तिहाई संपत्ति वितरित होती है।
1: ये आपके द्वारा हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य जो धर्मावलंबी व्यक्ति हैं उनके बारे में भी उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान बताए गए। आपके द्वारा इस गूढ़ विषय के संबंध में बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सबको प्राप्त हो रही है। कार्यक्रम के अंत में इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, हम वह जानना चाहेंगे।
0: उत्तराधिकार अधिनियम केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक संरचना, संपत्ति का अधिकार और सामाजिक न्याय का संतुलित तंत्र है।
1: जी।
0: यह अधिनियम केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं करता, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करता है। उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिविल मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। आगामी नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर व समस्त तालुका व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्पेशल लोक अदालत 18 जुलाई 2026 व 21 नवंबर 2026 को भी आयोजित किया जाएगा।
1: आप अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए इन जानकारियों के साथ आकाशवाणी बिलासपुर में आई और यह ज्ञानवर्धक जानकारी हम सबको प्रदान की है। हम आकाशवाणी परिवार और हमारे श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आपका और आपकी पूरी आकाशवाणी टीम का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद।
2: कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी। विशेषज्ञ थीं सुश्री मनीषा ठाकुर, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर। भेंटकर्ता थे श्री विवेक पांडे, अधिवक्ता। प्रस्तुतकर्ता थीं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: खो गया इंतजाम।
6: किसका?
7: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: दीदी नौकरी लग गई।
9: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
8: हाँ दी, नया मोबाइल।
9: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
8: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
9: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
8: पर दीप,
9: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
8: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
9: अच्छा।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: तीनों कॉलेज में,
11: डोंट वरी,
10: फीस तो देखो।
12: क्या हाल है, क्या हुआ?
11: फीस की टेंशन।
12: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
13: आरबीआई कहता है,
14: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
15: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
16: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी।
13: मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
16: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
16: आकाशवाणी से।
17: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
13: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
16: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
13: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
17: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
18: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 125,000 आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। ये महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण कल 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल डीपाडीह सामंत सरना में भी कल स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश में तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल हैं। बैठक में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान को रोकने के लिए निर्माण कार्यक्रमों और आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियों के पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1,136 सहित कुल 1,228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से अब महिला बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से सीधे वीडियो कॉल के जरिए संवाद कर सकेंगी। वीडियो कॉलिंग सुविधा के लिए जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच अनुबंध हुआ है। वहीं आज जेल परिसर में हुए निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा करने वाली 38 महिला बंदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे 14 बच्चों को विभाग की ओर से विशेष उपहार वितरित किए गए। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की समस्त माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
19: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
18: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले के चंद्रपुर थाना में पदस्थ ASI SN मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ASI ने बालपुर निवासी एक व्यक्ति से कड़ी कार्रवाई से बचाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वहीं कोरबा जिले में SSCL कुसमुंडा के CMPF विभाग में पदस्थ लिपिक मनोहर लाल कौशिक को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के दल ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लिपिक ने एक खदान कर्मी से उसके PF के 5 लाख रुपए निकालने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। धमतरी जिले का भटगांव जल्द ही राज्य का पहला अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनने जा रहा है। कलेक्टर की पहल पर यहां रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और त्वरित रोग निदान की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्नत नस्लों के संरक्षण और प्रजनन पर भी काम किया जाएगा। किसानों और युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। प्रथम चरण में 10 से 12 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पशु सखियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल 11 मई को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का एक चक्री चक्रवाती घेरा मन्नार की खाड़ी और उससे लगे श्रीलंका के ऊपर विस्तारित है। इसके अलावा एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 48 घंटे में बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य युवक झुलस गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने रायपुर मंडल के बिलासपुर रायपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल संरक्षा, परिचालन, कार्यप्रणाली, स्टेशन रीडेवलपमेंट, अमृत भारत स्टेशन परियोजना और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। रायपुर पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14.5 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसी जिले के पचधारी पिकनिक स्पॉट

0: रिसॉर्ट में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: को
8: बीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। उदित नारायण साधना सरगम की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं तकदीर वाला फिल्म के इस गाने को, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत में प्रिया है आनंद मिलिंद ने।

0: आकाशवाणी F90।
1: नमस्कार, मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आकाशवाणी का 90 वर्ष पूर्ण होना न सिर्फ एक संस्थान की वर्षगांठ है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपने यादों और अनुभवों को फिर से जीते हैं। रेडियो के साथ हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। दादा दादी या माता पिता के साथ बैठकर रेडियो पर समाचार और भक्ति संगीत सुनना बहुत याद आता है। दादा दादी के साथ बैठकर बिना का गीतमाला या विविध भारती के पुराने फिल्मी गीत सुनना और माता पिता का उन गानों के पीछे की कहानियां सुनाना एक अनमोल पल था। मैं रेडियो के कई तरह के कार्यक्रमों का आनंद लेती हूँ, जैसे चित्रपट, संगीत, विविध भारती, लघु नाटक, हास्य कार्यक्रम, युवाड़ी, बाल सभा, सभी मुझे पसंद है। इसके अतिरिक्त किसानवाड़ी, चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि उन्नत कृषि पद्धतियां, सरकारी योजनाएं, बाल मूल्य और स्वास्थ्य व सामाजिक मुद्दों पर ऑडियो सामग्री से मैंने व मेरे परिवार ने बहुत लाभ उठाया है। रेडियो के माध्यम से देश दुनिया के अलावा स्थानीय मुद्दों के समाचार भी बहुत अच्छे से सुनने को मिलते हैं। रेडियो विभिन्न प्रकार के ज्ञानवाहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिनमें विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर जागरूकता फैलाने का भी एक प्रभावी माध्यम है। मैं आशा करती हूँ कि आकाशवाणी इसी तरह अपनी मधुर ध्वनि से देश को प्रेरित करता रहेगा और नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में लीजिए सुनिए जमाने से क्या डरना फिल्म के इस नगमे को। समीर के शब्द हैं, धुन बनाई है आनंद मिलिन ने।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: अंदाज तेरा मस्ताना फिल्म के गाने में आप सुन रहे थे कुमार सानू साधना सरगम को। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया सब्बो किसान संगवारी मन ल नीलू प्रधान कोती ले राम राम जय जोहार। किसान भैया हो, आप मन के स्वागत हवे हमर कार्यक्रम चौपाल म। संगवारी हो, आप मन ल हमर कार्यक्रम म कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराथन, ताकि आप मन जो है बखत बेरा रहत अपन बूता कामला कर सक। संगवारी हो, आज के हमर कार्यक्रम म का गोट बात करबो तेला थोरकुन जान लें। संगवारी हो, आज की बात म हमन चर्चा करबो जायद म मूंग उड़द म रस चूसक कीट से बचाव के उपाय। आवाज के नसीहत में चर्चा करबो संगवारी हो, संरक्षित खेती से लाए आर्थिक समृद्धि। आवाज के टिप में चर्चा करबो संगवारी हो, छत पर बगीचों को अत्यधिक गर्मी से बचाव के उपाय। एक संगे संग संगवारी हो, आओ घल चर्चा करबो हमार चर्चा में हावे अल्पसंख्यकों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं। एकर अलावा अटल पेंशन योजना संगवारी हो, आओ पीएम राहत योजना संग में डिजिटल लेन देन में सावधानी अपनाएं। एकरे संगे संग संगवारी हो, आप मल्ला आज के किसान में ग्राम टिनमिनी विकासखंड पुसौर के महिला कृषक श्रीमती भोए एवं बहुत सुगर जो है मूंगफली एवं मूंग की उन्नत खेती विषय में मोर गोट बात हो रही संगवारी हो, ए लगलो आप मल्ला सुनवाबो संग में आप मल्ला मनोरंजन पर सुघर सुघर लोकगीत घलो सुनवाबो। तो संगवारी हो, हमार आज के चौपाल कार्यक्रम वाला शुरू करन आज की बात ले। संगवारी हो, हमार आज की बात में हावे जायद में मूंग उड़द में लगैया रस चूसक कीट के बचाव के उपाय। किसान दादा हो, आज हमन बात करबो जायद में लगैया मूंग उड़द में रस चूसक कीट के बचाव के उपाय। रस चूसक कीड़ा जो है संगवारी हो, यह हमर जोन मूंग के फसल है, उड़द के फसल है, गर्मी महीना में बहुत ही ज़्यादा लगते। रस चूसक कीटा के बारे में जानबो तो संगवारी हो, यह बहुत ही नानकुन एकदम छोटे से कीट होते, लेकिन एकर जो हमर जोन फसल के नुकसान है वह बहुत ही भयंकर होते, जेकर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हावे संगवारी हो। किसान दादा हो, आप मन फसल जो लगाए हर अभी के बेरा में जो उड़द मूंग है ओ में कैसे ये रस चूसक कीट जो है किस प्रकार हमारे फसल लग नुकसान करते, एकर उपाय कैसे करबो, एकर जानकारी जो है आप मल्ला सही से रखना बहुत ही जरूरी हावे। तो रस चूसक कीट के बारे में जानबो तो संगवारी हो, रस चूसक कीट जो है फसल के जो हमन लगाए हन मूंग उड़द वो फसल में जो हमन लगाथन तो ओकर बाद हमर फसल में जो है नवा नवा पाल निकलते, कोमल जो डंठल होते और फूल होते ओकर रस ला जो है चूस लेते, जेकर ले जो है हमर पौधा मूंग उड़द है वो पौधा जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाते, ओकर वृद्धि और विकास जो है रुक जाते संगवारी हो, और धीरे धीरे करके जो है हमर फसल जो है खप जाते और हमर किसान भाई मल्ला जो है भारी नुकसान उठाना पड़ते। तो संगवारी हो, एकर नियंत्रण करना एकर बचाव करना हमर बर बहुत ही जरूरी हावे। एकर बचाव बर हमन का कर सकत हैं एकर बारे में जानबो। सबसे पहले तो संगवारी हो, हमन जानबो कि रस चूसक कीटा जो है किस प्रकार हमर पौधा मल्ला नुकसान पहुँचा थे और ये कीड़ा जो है किस प्रकार जो है दिखते। तो संगवारी हो, हमन जानबो कि रस चूसक कीटा जो है बहुत ही छोटे में बहुत ही छोटे होते आकार में संगवारी हो, और हमर पान के जो है खाले में बसेरा करते, और कीड़ा जो है ये हमर पौधा के कोमल डंठल मल्ला जो है रस चूस जाते, और जो पान है वो पान के रस मल्ला रस ला चूसते। तो संगवारी हो, हमर पौधा जो है हमर पत्ती जो है वो हर सिकुड़ हो जाते और हमर पौधा जो है धीरे धीरे खप जाते। तो एकर नियंत्रण करना संगवारी हो बहुत ही जरूरी हावे। एकर नियंत्रण बर आप मल्ला का करना हावे, सबसे पहली तो संगवारी हो बात करन एकर बचाव के उपाय के, तो हाँ मल्ला सबसे पहले हमर फसल ला जो है नियमित रूप ले निगरानी करना हावे। किसान भाई हो, हर 4 से 5 दिन के बाद हमन ला अपन खेत में जोन भी फसल लगाए हन, अभी के बेरा में जैसे घाम के बेरा में अपन उड़द मूंग लगाए हैं, तो उड़द मूंग के देख रेख जो है आप मल्ला नियमित रूप से निगरानी करना हावे। देखना हावे कि शुरुआत में
कीड़ा तो नहीं लगे हवे, अगर लगे हवे तो हमन ला ओकर नियंत्रण जो है करना हवे संगवारी हो, तुरंत उपचार हमन ला करना हवे। तेकर बर जरूरी होते कि हमन अपन फसल के निगरानी नियमित रूप ले करन। दूसर जो महत्वपूर्ण उपाय होते संगवारी हो, जैसे हमार फसल में कीड़ा लगते तो हमन ला साफ सफाई के बहुत ही ध्यान रखना पड़ते। खेत में उगे जोन घास फूस होते हैं, वो घास फूस मल्ला जो है निकालना, निराई गुड़ाई करना अबर जरूरी होते। काबर कि घास फूस में संगवारी हो, हमार रस चूसक कीट मन जो है खाले में हमार खरपतवार में छिप जाते हैं और हमार जो मुख्य फसल है वो फसल ला बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं, जेकर ले हमन ला खरपतवार के नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हवे। और खरपतवार के बाद संगवारी हो, दूसरा जो कीट हवे वो ज़्यादा हमार फसल ला नुकसान पहुँचाते। तो हमन ला जरूरी हवे कि हमार फसल में जो है साफ सफाई निंदाई गुड़ाई के विशेष ध्यान दें। तीसर उपाय जो है संगवारी हो, रस चूसक कीट जो है बहुत ही छोटे होते तो हमन ओला आसानी से जो है ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप यानी कि संगवारी हो, हमन ला जो कीट है वो रस चूसक कीट ओला हमन आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षित कैसे कर सकते हैं? हमन जो है पीला चिपचिपा ट्रैप या नीला चिपचिपा ट्रैप के जो है हमार पौधा जैसे 2 फीट के है तो संगवारी हो 2 फीट में वो चिपचिपा पदार्थ ला फसल के बराबर में ही हमन ला लगाना हवे। फसल के बराबर में ही लगाबो तो संगवारी हो हमार फसल जो है जो रस चूसक कीट लगे है और कीट मन ला जो है आकर्षित कर लेते और वो में चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते तो संगवारी हो एकर ले जो है आसानी से नियंत्रण हो जाते। अगर आप मन 1 एकड़ जैसे मूंग उड़द लगाए हो तो 1 एकड़ खेत में जो है आप मतलब पीला चिपचिपा ट्रैप या नीला चिपचिपा ट्रैप जो है आप मन लगाना चाहते तो आप मन ला जो है 8 से 10 ट्रैप लगाना जो है फायदेमंद रहते। तो एकर ले घलो आप मन जो है ये कीड़ा ला जो है आसानी से नियंत्रित कर सकता। ये पूर्ण रूप ले जो है जैविक तरीका हवे संगवारी हो, एकर ले पर्यावरण ला हमन ला कोनो भी नुकसान नहीं होए। तो ये उपाय जो है आपन कर सकता और ये जो है कम कीमत में घलो आप मन ला आसानी से मिल सकते। अब बात करते हैं संगवारी हो खाद और पानी के सही उपयोग के। कई किसान भाई मन जो है ज़्यादा उत्पादन के लालच में या बहुत जो है यूरिया के खाद जो है दे देते हैं, लेकिन संगवारी हो हमार जो उड़द और मूंग के खेती करते हैं तो ए में जो है नाइट्रोजन के वातावरण ले जो है ए मन पहले से फिक्स करके रखे रहते हैं। ए मल्ला जो है ज़्यादा नाइट्रोजन के ज़रूरत जो है नहीं पड़े, तो हमन जो ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं तो हमार फसल जो है पीला पड़ जाते हैं और धीरे धीरे जो है हमला नुकसान होते। तो हमला जरूरी हवे कि दलहनीय फसल जो मूंग उड़द है वो में हमला यूरिया के ज़्यादा छिड़काव नहीं करना हवे, संतुलित मात्रा में ही हमला उपयोग करना हवे। अब अगर हमन एला ज़्यादा उपयोग करत हैं संगवारी हो यूरिया ला तो हमार पौधा जो है नरम हो जाते और कोमल पत्ती जो है हमार फसल जो है बढ़िया दिखते लेकिन ओमा फल फूल जो है बढ़िया से नहीं आए। तेकर बर हमन ला जरूरी हवे कि ओमा हमन ज़्यादा यूरिया के उपयोग नहीं करन और उपयोग करथन तो संगवारी हो रस चूसक कीट के भी ज़्यादा प्रयोग ज़्यादा लगने के डर रहते। तो हमन ला जरूरी हवे कि संतुलित मात्रा में ही यूरिया के खाद ला देना हवे और खाद अगर देत हन तो संगवारी हो गोबर के खाद और जैविक खाद के उपयोग हमन ला करना हवे। एकर ले जो है हमार पौधा जो है मजबूत रही थे और बीमारी जो है कम लगते। तो आप मन ये चीज़ ला ध्यान रखिया। जैविक उपाय में संगवारी हो हमन नीम तेल के उपयोग घल कर सकत हन। अगर आप मन के फल में जैसे मूंग उड़द लगाए है तो ओमा रस चूसक कीट लगे है तो आप मन जैविक रूप ले जो है आप मन नीम के तेल घलो उपयोग कर सकत है। नीम के तेल के उपयोग संगवारी हो अपन 5 मिली जो है नीम के तेल जो है प्रति लीटर पानी में मिला के जो है छिड़काव कर सकत है। नीम के गंध और असर ले कीड़ा जो है रस चूसक कीड़ा जो है कम हो जाते और फसल जो है सुरक्षित रहते। नीम आधारित दवाई पर्यावरण पर और मानव स्वास्थ्य पर भी सुरक्षित रहते। तो संगवारी हो ये चीज़ ला आप मन जो है ध्यान रख के कर सकता।
अगर खेत में जो है, अगर आप मन के खेत में जो है बहुत ही ज़्यादा कीड़ा लग गए हवे और जैविक उपाय ले घलो नियंत्रण नहीं होते तो संगवारी हो आप मन रासायनिक उपयोग घलो कर सकत है। फिर दवाई हमेशा कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ के सलाह से ही आप मल्ला उपयोग करना हवे। सामान्य रूप ले संगवारी हो आप मन इमिडा क्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सॉक जो है एला अपन उपयोग जो है कर सकत है। दवाई के उपयोग संगवारी हो आप मल्ला सही मात्रा और सही समय में करना ही आप मल्ला फायदेमंद रहते। तो ये चीज़ ला संगवारी हो आपन ध्यान रख। छिड़काव करे वक्त आप मल्ला ध्यान रखना हवे कि सुबह या संझा के टाइम में ही छिड़काव कर, ताकि संगवारी हो सुबह और संझा के हमार जो कीट है वो मन ज़्यादा ही बाहर निकलते, तो हमन इस वो टाइम में छिड़काव करते हैं तो हमार कीट मन जो है नियंत्रण हो सकते हैं। तो संगवारी हो ये चीज़ ला अपन ध्यान रख के जो है आपन अपन फसल में जो रस चूसक कीटा लगे हैं संगवारी हो एला नियंत्रण अपन कर सकत है। संगवारी हो अब बखत बेरा हो चली से आज के कृषक प्रश्न मंच के। संगवारी हो आज मैं आप मन ला एक ठन प्रश्न पूछी हूँ जेकर उत्तर आप मन लिख भेजिया। संगवारी हो हमार प्रश्न हावे, जायद में मूंग उड़द में लगैया रस चूसक कीड़ा फसल के कौन कौन से भाग ला नुकसान पहुँचाते। संगवारी हो एकर उत्तर हमन ला लिख भेजिया। हमार पता हावे कार्यक्रम चौपाल क्रम कृषक प्रश्न मंच द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 हमार रायगढ़ के पिन नंबर हावे 496001। ई पता में हमन ला आपन के उत्तर लिख भेज सकत है। अब संगवारी हो आज के किसान के बखत बेरा हुआ थे। आज के किसान में हमन सुनबो ग्राम टिनमिनी विकासखंड पुसौर के महिला कृषक श्रीमती भोय। एमन बहुत सुघर जो है मूँगफली एवं मूँग की उन्नत खेती करीन हावे। मोर संग गोट बात हो रही संगवारी हो आवा सुनन आज के किसान। किसानवाणी में किसानवाणी सुनैया सबो किसान संगवारी मल्ला नीलू प्रधान कोती ले राम राम जय जोहार। संगवारी हो आज के हमार कार्यक्रम किसानवाणी में आज क्रम रही थे आज के किसान। यही क्रम में आज हमन पहुँच गए हन एक ऐसा प्रगतिशील उन्नतशील किसानीन महिला करा जोन मन बहुत सुघर जो है अपन खेत में आने वानी के फसल ला लगाइन हवे। अभी के बखत बेरा में हमार किसानीन दई काका फसल लगाइन हवे आवा किसानीन दई ले जानबो। किसानीन दई आप मल

0: के एकड़ में लगाए है इला।
1: मूंग ला 2 एकड़ में छीटे हैं, मूंगफली ला 1 एकड़ लगाए हैं।
0: अच्छा, दोनों ला लगाए है का।
1: हाँ
0: अब एकर देख रेख जो है आप मन करता खुद?
1: नहीं, हमन नौकर रखे हैं, खुद भी करत हैं, लेबर भी बुलात हैं।
0: किसानी दही देखो, अपन इतकी सारा फसल लगाए है तो सबसे पहले जो फसल हमन लगाथन तो ओकर पहले जो है हमन ला खेत के जोताई करे बर लागथे कहा।
1: हाँ,
0: तो आप मन जो है खेत के जोताई कैसे करे है?
1: हमन ट्रैक्टर में उला जोताई कर दे हन, उसके बाद में उला रोटावेटर में पूरा भुरभुरा कर दे हन।
0: अच्छा, तो ट्रैक्टर जो है आप मन के खुद है कि आप मन किराया
1: हाँ,
0: करते हैं?
1: हमार खुद के ट्रैक्टर है तो उला हमन पूरा भुरभुरा करके जोताई करके उला पूरा सम करके कपर में उला गार धर दिन है।
0: अच्छा, गार धर देह का।
1: हाँ
0: तो जोन बीज है वो बीज आप मन 1 एकड़ मूंगफली लगाया है तो बीज वो में कतक लगते आप मन ला?
1: हमन ओकर बीज ला मूंगफली ला खरीद के ले लाने रहें, ओमे हमार 50 किलो
0: बीज
1: मूंगफली
0: लगते।
1: बीज निसरे रहीस, ओला हमन जगाए।
0: अच्छा, लगाया है का।
1: हाँ,
0: तो मूंगफली के बीज ला अपन खेत में कते कते दूरिया में लगाए जाते?
1: एक बीता में लगाए हैं ओला, एक बीता में आया है।
0: फिर ओला टोप देता का।
1: हाँ
0: तो जैसे खाद पानी है ओला अपन कैसे देता?
1: ओला हमन एक ट्राली खातू ला दे हन, एकक मुठा एकक उन्हीं करके ओला तोप दे हन माटी ये खातू ला। ओकर बाद में हमन एक बोरा डीएपी दे हन और 2 बोरा पोटाश दे हन।
0: अच्छा, और सुपर और गोबर खाद सब देह का?
1: हाँ, सब ला दे हन एक साथ में और बीज ला जगा के खातू ला तोप दे हन।
0: तो ओकर बाद सिंचाई कैसे करता अपन?
1: सिंचाई हमार ट्यूबवेल है, वो मैं परिया परिया बना के पानी ला दे दे हाँ।
0: तो जोन मूंगफली के बीज है और कतेक दिन में जाम जाते जब लगा था तो?
1: और 10 से 12-13 दिन में जाम जाते।
0: अच्छा, जाम जाते कहा।
1: हाँ,
0: और जैसने घास फूस मन उग जाते तो ओला आप मन कैसने करता?
1: ओला हमन खर्चा करते हैं ओला हमन, और जोन और नहीं आए ओला हमन हाथ में भी घींच देता।
0: अच्छा, हाथ में भी खींच देता कहा।
1: हाँ,
0: अच्छा, जैसे आओ कीट मकोड़ा हो जाते तो आप मन कैसने करता?
1: ओला दवाई छिड़काव करता।
0: तो आपन जैसे लगाए हरी है मूंगफली के खेती करे है तो हर कितने महीना के फसल है?
1: इधर 3-4 महीना में हो जाती।
0: अच्छा, 3-4 महीना में हो जाते का।
1: हाँ,
0: तो अभी के बेरा में आपन के मूंगफली हर कौन अवस्था में आए?
1: अभी 1 पानी 2 पानी लागी।
0: अभी के बेरा में कहा,
1: हाँ,
0: ओकर बाद आपन के फसल जो है हो जाही?
1: हो जाही।
0: तो अभी के बेरा में आपन के फसल जो है बढ़िया दिखत है?
1: हाँ, बढ़िया हुई से।
0: तो मुनाफा हुए के बढ़िया वो है का?
1: हाँ, बढ़िया दिखत है और बढ़िया हुई से भी।
0: तो किसानी दई आपन मूंग के खेती घलो करे है का?
1: हाँ, मूंग ला भी करे हन, अभी निंदा ओकर निंदाई चलत है, ओहर भी बढ़िया हुई से।
0: तो 2 एकड़ लगाया है कहा था तो मैं कतक बीज लग जाते 2 एकड़ में?
1: 2 एकड़ में, 1 एकड़ में हमन 8 किलो बुने हैं तो 2 एकड़ में 16 किलो बुने हैं।
0: अच्छा, बुने है कहा।
1: हाँ,
0: तो मैं सिंचाई कितने कितने लगते, कितने कितने दिन के अंतराल में करता अपन?
1: ओहर मूंग में 3 पानी में हो जाते है ओहर।
0: 3 पानी में हो जाते का?
1: हाँ,
0: और मैं खाद पानी किसने देता वो मैं?
1: ओ में डीएपी 1 बार दे रहे हैं और 2 बार दवाई दे। हाँ
0: कीटनाशक की दवाई का
1: हाँ
0: तो फसल जो है हो जाएगा?
1: हाँ बढ़िया हुई से मूंग है।
0: तो मैं बढ़िया उत्पादन लागत है आप मतलब?
1: हाँ, बढ़िया, ज्यादा पानी भी नहीं लगे और बढ़िया करके होते भी दाल हो जाते।
0: और मूंग देखिए तो प्रोटीन के बढ़िया स्रोत घले है का?
1: हाँ, बढ़िया भी होते और बढ़िया लगते भी।
0: तो ये हर आप मन बढ़िया मुनाफा कमात का दोनों ले?
1: हाँ,
0: तो किसान दई आप मन देखा कतका सुघर जो है हमला जानकारी दे है, तेकर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहर।
0: किसान भाई हो, अभी हमन सुनन आज के किसान ग्राम टिनमिनी विकासखंड पुसोर की महिला कृषक श्रीमती भोय, एमन बहुत सुघर जो है मूंगफली एवं मूंग की उन्नत खेती विषय पर हमला जानकारी दीन। संगवारी हो, आवाज सुनन एक संदेश, फिर हमार चर्चा ला आगू बढ़ाबू।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: संगवारी हो, अभी हमन सुनन संदेश। हमर आज के नसीहत में चर्चा करबो संगवारी हो, संरक्षित खेती से लाएं आर्थिक समृद्धि। संगवारी हो, संरक्षित खेती आज के समय में देखिए तो बहुत ही फायदेमंद है हमर किसान माई भाई मन मर। संगवारी हो, संरक्षित खेती एक प्रकार के ऐसे तकनीक हवे संगवारी हो, जेकर ले हमर किसान भाई मन जो है अपन आमदनी जो है दुगुना बढ़ा सकते हैं। संरक्षित खेती जो है हमन कम जगह में संगवारी हो आप मन अधिक जो है उत्पादन ले सकत है और अपन मुनाफा ला जो है बढ़ा सकत है। संरक्षित खेती के बारे में आप मन ला फोर के बताबो तो संगवारी हो, संरक्षित खेती के मतलब होते फसल ला ऐसने माहौल में उगाना कि बरसात में घलो, घाम में घलो, या ठंड हो या कीड़ा मकोड़ा हो, ये जो है हमार फसल ला नुकसान नहीं पहुँचा सकें। हमन ये संभव हो सके थे संगवारी हो संरक्षित खेती के माध्यम ले। संरक्षित खेती जो है संगवारी हो हमन जैसे कि पॉली हाउस हो गए, ग्रीन हाउस हो गए, सेड नेट हाउस, मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई, ये सबो जो है संगवारी हो आधुनिक तकनीक के माध्यम ले जो है हमन फसल ला उगाथन तो हमार फसल जो है सुरक्षित रही थे और हमार उत्पादन जो है दुगुना बढ़ जाते। पहली जो है किसान साथियों, हमन जो है फसल जो है हमन उगान तो ऊपर के ऊपर जो है हमन ला निर्भर रहना पड़े, लेकिन आज के देखिए तो संगवारी हो मौसम परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा होते जेकर ले जो है हमन ला संरक्षित खेती करना जो है बहुत ही ज़रूरी हो गए। काबर की कभू ओला गिरे थे संगी हो, तो कभू तेज बारिश हो थे, तो कभू सूखा पड़ा थे, ये सब ले हमन ला बचाए बर, हमार फसल ला बचाए बर हमन संरक्षित खेती जो है कर सकत हन। संरक्षित खेती ले जो है हमन अपन फसल ला जो है सुरक्षा दे सकत हन और हमार फसल ला जो है दुगुना आमदनी बढ़ा सकत हन। संरक्षित खेती के फायदा में जानबो तो संगवारी हो हमन ला एकर ले साल भर खेती जो है हमन कर सकत हन। पहली हमन कुछ महीना में खेती करके जो है छोड़ देते रहें, लेकिन हमन संरक्षित खेती में जो है साल भर हमन पॉली हाउस या सेड नेट में किसान भाई जो है साल भर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, फूलगोभी, धनिया और कई प्रकार के सब्जी जो है आपन उगा सकता था और एकर ले मुनाफा ले सकता था, एकर ले जो है हमन ला बहुत फ़ायदा होते। दूसरा जो संरक्षित खेती ले जो फ़ायदा होते संगवारी हो हमार उत्पादन जो है दुगुना बढ़ जाते। साधारण खेती की तुलना में देखिए तो संगवारी हो दो ले तीन गुना ज़्यादा उत्पादन हमन ला मिलते। काबर की फसल ला सही तापमान मिलते, नमी मिलते और सुरक्षा मिलते, जेकर ले हमार फसल के उत्पादन जो है दुगुना बढ़ जाते। तीसरा जो फायदा होते संगवारी हो पानी के बचत। हमन ड्रिप सिस्टम के उपयोग करथन तो हमार फसल ला जो है बूंद बूंद पानी सीधा जड़ में हमार पौधा मन ला मिलते, जेकर ले हमन पानी के बचत जो है 50-60% तक जो है कर सकत हन और बिजली के खर्चा घलो कम हो जाते तो हमन जो है पानी के बचत घलो कर सकत हन संगवारी हो। एकर अलावा कीटनाशक जो है कम लगते। अगर हमन संरक्षित खेती करथन तो हमार जोन लगैया कीटनाशक है, रोग मन है, वो हर ज़्यादा नहीं लगे, वो बाहर हमार फसल जो है एकदम सुरक्षित रही थे और हमार फसल के जो गुणवत्ता है वो हर घलो बढ़िया हो जाते। एकर अलावा संगवारी हो पांचवा जो फायदा होते बाजार में ज़्यादा दाम मिलते। जब किसान भाई मौसम के बाहर सब्जी बेचते तो संगवारी हो बाजार में ओकर दाम जो है ज़्यादा मिलते। जैसे कि बरसात या गर्मी में अगर खीरा टमाटर या शिमला मिर्च तैयार हो जाते तो व्यापारी जो है बढ़िया दाम देते, तो एकर ले जो है हमन ला भी फायदा होते संगवारी हो। तो ये चीज़ ला जो है संगवारी हो हमन लगा के संरक्षित खेती करके जो है फायदा ले सकत हन, एकर उपयोग जो है आपन कर सकत हन। संगवारी हो आवाज सुनन एक सुखर अकन लोकगीत, फिर हमार चर्चा ला आगू बढ़ाबो।

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: संगवारी हो अभी हमन सुनन संदेश, ओकर पहले सुनत रहन संगवारी हो रामावत तोरण चंद्राकर व साथी की आवाज में सुखर अकन लोकगीत आना बैठ के सुरताली। संगवारी हो आज के टिप में चर्चा करबो छत पर बगीचों को अत्यधिक गर्मी से बचाव के उपाय। गर्मी के मौसम में बगीचा ला सुरक्षित रखे बर खास देखभाल जरूरी होते। संगवारी हो ज़्यादा गर्मी और तेज धूप ले पौधा जो है सूख जाते, पत्ती मन सूख जाते हैं और फल फूल मन जो है खराब हो सकते। ये कारण ले हा मल्ला आसान उपाय मल्ला अपनाना जरूरी हवे। बगीचा मल्ला गर्मी ले बचाव बर समय पर पानी हमल्ला देना हवे। बिहनिया जल्दी या सांझ के समय में हमल्ला पौधा मल्ला पानी देना हवे। दोपहर के अगर हमन पानी दे थन तो संगवारी हो हमर पानी जो है जल्दी जल्दी सूख जाते और पौधा ला जो है पूरा पूरा रूप में फायदा नहीं मिले। तेकर पर हमला ध्यान रखना हवे कि अपन पौधा मल्ला जो है सांझ के या जल्दी बिहनिया ले हमला पौधा मल्ला पानी देना हवे। ओकर बाद संगवारी हो हमला मल्चिंग करना हवे। पौधा के जड़ में जो है सूखा पत्ता है या भूसा या घास ला जो है बिछा देना हवे। एकर ले जो है का होते संगवारी हो हमर जो पौधा है ओला नमी बने रहते और हमर घास फूस मन घलो नहीं उगे और हमर पौधा जो है सुरक्षित रहते। एकर पर जरूरी होते कि हमर मल्चिंग जो है करना हवे। एकर अलावा संगवारी हो छाँव के व्यवस्था करना हवे। हमर पौधा मन जो है नाजुक रहते हैं, एकर बर हमला लगाना हवे हमर ऊपर में जो है फसल के ऊपर में हरा जाल या ग्रीन नेट या कपड़ा लगा के जो है धूप तेज धूप ले जो है हमला बचाव करना हवे। ज़्यादा खाद के उपयोग जो है हमला नहीं करना हवे। गर्मी में ज़्यादा रासायनिक खाद दे ले संगवारी हो पौधा जो है जल सकत है। हल्का जैविक खाद हमला उपयोग करना बेहतर रहते। जैविक खाद में अपन संगवारी हो नीम के खाद अपन उपयोग कर सकत है। एला जो है उपयोग करके हमन जो है अपन फसल ला बढ़िया उत्पादन ले सकत हन। एकर अलावा संगवारी हो मिट्टी ला नरम रखो। समय समय में मिट्टी कोढ़ाई करो ताकि हवा और पानी जो है बराबर रूप से हमर पौधा मल्ला मिल सके। सूखे पत्ती और खरपतवार मल्ला जो है हमला समय समय में हटाना रहते ताकि हमर पौधा जो है स्वस्थ रहते और पानी के बचत जो है होते। एकर अलावा संगवारी हो ड्रिप सिंचाई हमला अपनाना हवे। ड्रिप सिंचाई अगर हमन अपनाथन तो हमर फसल मल्ला जो है बढ़िया पानी घलो मिलते और उत्पादन घलो हमला बढ़िया मिलते। ये उपाय अपना के संगवारी हो अपन बगीचा ला गर्मी ले बचाए जा सकते है और पौधा जो है हरा भरा और स्वस्थ बने रही थे। तो संगवारी हो ये तो रही हमार आज के टिप के विषय में। अब सुनबो और एक गगन सुघर कर लोकगीत फिर हमार चर्चा ला आगू बढ़ावो।

0: संगवारी हो, अभी हमन सुनन रामावतार साहू और साथी की आवाज़ में ये सुघर अकन लोकगीत। हमर चर्चा ला आगू बढ़ाबो और चर्चा करबो पीएम राहत योजना। संगी हो, पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना में पीड़ित मनखे मन ला तत्काल जो है कैशलेस इलाज प्रदान जो है सरकार डहर ले किए जाते। यह संगवारी हो, सरकार डहर ले एक महत्वपूर्ण योजना हावे। एकर तहत सड़क हादसा में घायल व्यक्ति ला दुर्घटना के पश्चात पहले जो है 7 दिन के भीतर में संगवारी हो आप मन ला सरकार की तरफ ले 1.5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज जो है घायल व्यक्ति ला मिलते, ताकि पैसा की कमी ले संगवारी हो इलाज में देरी झन हो और कीमती जीवन ला बचाया जा सके। ये योजना में संगवारी जो मुख्य बात हवे, पीएम राहत योजना में सड़क दुर्घटना पीड़ित मल्ला जो है गोल्डन आवर घटना के बाद पहला घंटा ले ही निशुल्क और तत्काल चिकित्सा सहायता जो है सुनिश्चित किए जाते। एकर अलावा संगवारी हो कैशलेस कवर यानी कि दुर्घटना के तिथि ले 7 दिन तक जो है आप मल्ला 1.5 लाख रुपए तक के जो है सीमा कैशलेस इलाज जो है आप मल्ला किए जाते। एकर बर संगवारी हो पात्रता जो हावे, ये योजना देश के कोनो भी सड़क हावे या शहर या गांव हो, कोनो भी हमर भारत देश में वाला दुर्घटना सबो पीड़ित मन ला जो है एकर इलाज जो है दिए जाते। इलाज की सुविधा बर संगवारी हो आप मन ला पुलिस प्रमाणीकरण के अधीन जो है आप मन ला करना हावे। गैर जीवन घातक मामलों में 24 घंटा और जीवन घातक मामला में 48 घंटा तक स्थिरीकरण उपचार जो है शामिल हावे और जरूरत पड़ी तो आके घलो एकर इलाज शामिल हावे। ये तो रही संगवारी हो पीएम राहत योजना। आव सुनन एक संदेश, फिर हमार चर्चा ला आगू बढ़ाओ।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: संगवारी हो अभी हमन सुनन संदेश। हमार और चर्चा के विषय हवे संगवारी हो डिजिटल लेन देन। आज के समय में डिजिटल लेन देन में सावधानी अपनाएं। संगवारी हो डिजिटल लेन देन ऑनलाइन पेमेंट जो है आज के समय में बहुत ही जरूरी हवे। आज के समय में देखियो तो डिजिटल लेन देन जैसे कि फोन पे हो गए, गूगल पे, भीम, यूपीआई, एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग जो है बहुत ही बढ़ गए हवे। ये सुविधा ले घर बैठे पैसा भेजना और सामान खरीदना जो है संगी हो आसान होगी से। फिर एकर संग साइबर ठगी के खतरा घलो बढ़ जाते। एकर कारण जो है डिजिटल लेन देन में सावधानी अपनाना बहुत ही जरूरी हवे। सबले पहले तो संगवारी हो अपन एटीएम के पिन नंबर जो हावे, ओटीपी हावे, यूपीआई पिन और बैंक के जानकारी कोनो भी अनजान व्यक्ति के संग आप मल्ला साझा नहीं करना हावे। बैंक या सरकारी अधिकारी बन के ठग मन के फोन करते हैं और जानकारी मांगते हैं। फिर सही संस्था कभू गोपनीय जानकारी जो है संगवारी हो नहीं मांगे। ऐसने फोन या मैसेज ले आप मल्ला जो है सतर्क रहना हावे। दूसर बात जो है आवे संगवारी हो पैसा भेजे से ती मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी ला ठीक ले हमला जांच कर लेना हावे। गलत नंबर में पैसा भेज देथन तो हमार ओला जो है वापस मिलना जो है बहुत ही कठिन हो जाते। केवल भरोसेमंद वेबसाइट या सुरक्षित ऐप के उपयोग जो है आप मल्ला करना हावे। मोबाइल में मजबूत पासवर्ड आप मल्ला लगाना हावे और समय समय में आप मल्ला एला बदलना घलो सुरक्षित रहते। सार्वजनिक वाईफाई जो है संगवारी हो एला ज़्यादा जो है आप मल्ला नहीं अपनाना हावे। बैंकिंग काम करना जो है संगवारी हो एकर ले खतरा हो सकते है। एकर ले आप मन ला बचना हावे। अगर कोनो संदिग्ध लेन देन दिखत है तो तुरंत बैंक या साइबर हेल्पलाइन ले आप मन ला शिकायत करना हावे। डिजिटल लेन देन में सावधानी अपनाना एखर सेती जरूरी हावे, काबर की एक छोटी गलती ले जो है हमार मेहनत कमाए पैसा जो है नुकसान हो सकत है। संगवारी हो, हमन ला सतर्क रहना हावे तो सुरक्षित हमन अपन आसान डिजिटल सेवा के लाभ ले सकत हन और दूसर मन ला घलो जागरूक बना सकत हन। तो संगवारी हो, ये तो रहीस हमार आज के चर्चा। आवा आओ एक ठन सुघर अकन लोकगीत सुनबो, फिर हमार चर्चा ला आगू बढ़ाबू।

संगवारी हो अभी हमन सुनेन पैरी हाँ तोर बाजे, जेमा कलाकार रही संगवारी हो काशीराम साहू और सोन कुंवर साहू की आवाज़ में। संगवारी हो हमार और चर्चा के विषय हवे अल्पसंख्यकों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं। संगवारी हो एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्य जो है हवे अपेक्षित वर्गों के लयिका मनला गर्भवती महिला मनला जो है महत्वपूर्ण विकास बर जो है सरकार आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम ले जो है सेवा उपलब्ध कराए जाते, जैसे कि पोषण व्यवस्था हो गए, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गए, जाँच हो गए, प्रतिरक्षीकरण हो गए, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा हो गए। संगवारी हो एकर जो है बढ़िया से बढ़िया घनी आबादी मल्ला जो है गांव प्रखंडों में स्थापित किए जाते और एकर लाभ जो है बढ़िया मिलते। तो ये तो रही संगवारी हो हमार आज के विषय के चर्चा। हमार आओ चर्चा हावे अटल पेंशन योजना। संगवारी हो अटल पेंशन योजना भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जेन लकी मई 2015 में शुरू किए गए रहीस। ये योजना के जो मुख्य उद्देश्य

हवे संगी हो। गरीब, मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार अउ असंगठित छेत्र म काम करे वाले लोगन मन ल बुढ़ापा म आर्थिक सुरक्छा प्रदान करे बर जो है ये योजना के शुरुआत किए गए रहिस। आज के समय म बहुत लोग ऐसने काम करते जहां रिटायरमेंट के बाद संगवारी हो पेंशन के सुविधा नहीं मिले। ऐसन स्थिति में अटल पेंशन योजना भविष्य पर एक भरोसेमंद सहारा बन के सामने आई हवे। ये योजना खास करके संगवारी हो ओ मनखे बर बनाए गए हवे जिन मन रोज कमाते हैं और रोज खर्च चलाते हैं। बुढ़ापा में काम करे के ताकत जो है कम हो जाते तो नियमित आय के जरूरत जो है पड़ते। ये योजना के माध्यम ले संगवारी हो सरकार ले 60 साल के बाद हर निश्चित पेंशन जो है दिए जाते जिन ले बुजुर्ग मन अपन जरूरत जो है पूरा कर सकते हैं। योजना के जो मुख्य उद्देश्य हवे संगवारी हो अटल पेंशन योजना के देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक बुढ़ापा में आर्थिक रूप ले सुरक्षित रहें। ये योजना बचत के आदत ला बढ़ावा देते और भविष्य की चिंता ला जो है कम करते। सरकार चाहते कि मजदूर, रिक्शा चालक, किसान, घरेलू कामगार, छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र के लोगन गलो पेंशन की सुविधा जो है पा सकें। योजना में कैसे जुड़ सकते संगवारी हो ये में जो है भारत के कोई भी नागरिक जो है जुड़ सकते। ओकर उम्र 18 साल ले 40 साल के बीच होना चाहिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता जो है जरूरी हावे। आधार कार्ड व मोबाइल नंबर जो है होना लाभदायक रहते। जोन व्यक्ति संगी हो 18 साल में योजना शुरू करते हैं ओला कम मासिक राशि में जो है जमा करना पड़ते। जैसे जैसे उम्र बढ़ते मासिक योजना जो है योगदान घलो जो है बढ़ जाते। पेंशन के जो राशि है संगवारी हो अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल के बाद हर महीना निश्चित पेंशन मिलते। व्यक्ति अपन सुविधा के अनुसार जो है पेंशन राशि चुन सकते। जैसे कि अपन 1,000 रुपये प्रति महीना जमा कर सकते हैं, 2,000 रुपये प्रति महीना या 3,000 रुपये या 4,000 या 5,000। जतका अधिक पेंशन आप मन चुनिया संगवारी हो अतका अधिक मासिक योजना जो है आप मन ला देना पड़ी। पैसा जो है कैसे आपन जमा कर सकते हैं ये योजना में संगवारी हो। जैसे कि योजना में जुड़े के बाद जो है हर महीना बैंक खाता ले अपन आप जो है रकम कट जाते। ए ला ऑटो डेबिट सुविधा जो है कहे जाते। एकर ले अलग ले पैसा जमा करे के झंझट जो है नी रहे। मासिक 3 महीना में या 6 महीना के आधार में जो है योगदान जमा करे के सुविधा गलो आप मन ला मिलते। योजना ले जुड़े के तरीका जो है संगवारी हो आप मन ला ज़्यादा कठिनाई की जरूरत नहीं पड़े। आसानी से एकर ये योजना ले जो है अपन जुड़ सकत है। योजना के नाम हावे अटल पेंशन योजना। संगवारी हो योजना में आप मन ला का करना हावे नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस ला अपन ला जाना हावे। अटल पेंशन योजना के फार्म आप मन ला मांगना हावे वो फार्म ला आप मन ला भरना हावे। ओकर बाद संगवारी हो जो आवश्यक दस्तावेज के जरूरी रहते वो हावे आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जो है ये जरूरी होते। ओकर बाद आप मन ला पेंशन के जो राशि है ओला आप मन ला चुनना हावे और ऑटो डेबिट अनुमति आप मन ला देना हावे। पंजीयन पूरा होए के बाद संगवारी हो आप मन ला जानकारी मिल जाही। आजकल कई बैंक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम ले घलो ऑनलाइन सुविधा गलो दिए जाते। ये योजना के फायदा जो है संगवारी हो आप मन ला बुढ़ापा में नियमित आय के एक जरिया बन जाते। 60 साल के बाद हर महीना आप मन ला पेंशन मिलते जिन ले दैनिक जरूरत जो है आप मन के पूरा होते। एकर अलावा संगवारी हो दूसरा जो फायदा होते परिवार ला घलो सुरक्षित रख सकत है। अगर योजना धारक के मृत्यु घलो हो जाते तो पति या पत्नी ला जो है ये पेंशन मिल सकते।
बाद में नामांकित व्यक्ति ला जमा रकम वापस।

भी आप मन ला मिल जाते संगवारी हो। बचत के जो आदत है, हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करे ले भविष्य जो है सुरक्षित रहते। और गरीब वर्ग पर यह लाभकारी है। कम आय वाले परिवार पर यह संगवारी हो ये योजना बहुत ही उपयोगी हावे। और यह हर जो है ये योजना जो है संगवारी हो सरकारी सुरक्षा घलो मिलते। यह योजना जो है भारत सरकार द्वारा संचालित है वे एखर ले भरोसा और सुरक्षा जो है दोनों बने रहे थे। जरूरी जो सावधानी है संगवारी हो बैंक खाता में पर्याप्त पैसा आप मल्ला रखना जरूरी हावे। समय पर रकम नहीं कटे तो जुर्माना जो है आप मल्ला लग सकते। सही जानकारी और मोबाइल नंबर जो है आप मल्ला देना जरूरी होते। अटल पेंशन योजना गरीब और मेहनत कश लोगन मन पर बहुत ही उपयोगी हावे संगवारी हो। ये योजना बुढ़ापा में आर्थिक सहायता देते और सम्मानपूर्वक जीवन जिए के मदद करते। आज के समय में हर व्यक्ति ला भविष्य पर बचत करना जरूरी हावे। अटल पेंशन योजना कम पैसा में सुरक्षित भविष्य देह वाला एक अच्छा विकल्प हावे। सरकार ये योजना लाखों लोगन के जीवन में ला सुरक्षा और भरोसा देते संगवारी हो। तो संगवारी हो हमारे जाए के बखत बेरा हो थे। अपन बहनी नीलू प्रधान ला देवा विदा। राम राम जय जोहार।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 8:20 हुए हैं, वक्त हो चला है गैर फिल्मी गीत का। अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनिए इस गाने को। रश्मि विराग ने गीत लिखा है, संगीत है पीयूष शंकर की।

कुमार सानू आस्था गिल की आवाज़ों में आप सुन रहे थे इस गाने को। हितेन ने धुन बनाई थी राजा दिलवाला के बोल थे। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ों में आइए सुनते हैं नगीना फिल्म के इस गाने को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सजाया है। बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: आकाशवाणी F90।
5: नमस्कार, मेरा नाम रोहित गुप्ता है। हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हमें रेडियो से जुड़े हुए काफी वर्ष हो चुके हैं। मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ हमारा पूरा परिवार रेडियो के कई तरह के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। हमारे सुबह की शुरुआत रेडियो के द्वारा भजन से होती है, जिससे हमारे घर में एक आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। हम रेडियो के कई कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, जैसे चित्रपट, संगीत, विविध भारती, लघु नाटक, हास्य कार्यक्रम, युवाणी, बाल सभा। हमें सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है। इसके अलावा अतिरिक्त शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार और ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार में भी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातें बतलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त किसान वाणी चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि उन्नत कृषि कार्य, सरकारी योजनाएं, बाजार मूल्य और स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर ऑडियो सामग्री से मैंने व मेरे परिवार ने बहुत लाभ उठाया है। रेडियो के माध्यम से देश विदेश की दुनिया के अलावा स्थानीय मुद्दों समाचार भी बहुत अच्छे से सुनने को मिलते हैं। रेडियो विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिससे विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर हमें अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रेडियो ना सिर्फ मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह लोगों को शिक्षित करने और अलग अलग विषयों पर जागरूकता फैलाने का भी एक प्रभावी माध्यम है। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर समस्त आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आकाशवाणी इसी तरह अपनी मधुर ध्वनि से देश को प्रेरित करता रहेगा और नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। धन्यवाद।

AIR at 90. संदेश से पहले आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म के गाने में जसपाल सिंह और हेमलता को। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ

0: सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। ये रास्ते हैं प्यार के, यह फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुन रहे हैं।

ये रास्ते हैं प्यार के इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और संगीत से सजाया था इस गीत को रवि ने। यह है भीगी रात फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं।

भीगी रात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुरी की आवाजों में। बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी रोशन ने। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शिकारी फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर उषा मंगेशकर की हैं। फारूक कैसर ने इस गीत को लिखा है और जी एस कोहली ने धुन बनाई है।

शिकारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर उषा मंगेशकर के आवाजों में आप सुन रहे थे। फारूक कैसर के बोल थे और जीएस कोहली की धुन थी। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। मोहम्मद रफी की आवाज में साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत लीजिए, सुनिए।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप वासना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना प्रेम धवन की थी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी की आवाज में मोहम्मद रफी

और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए सुनिए एसएच बिहारी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

हैप्पी न्यू ईयर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

का मोड आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: सिया मिलन को जाना, आप

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिक आई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर रात के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं अनुपमा फिल्म के गाने को। कैफी आजमी ने गीत लिखा है, संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: संदेश पहले आप सुन रहे थे किशोर कुमार शमशाद बेगम की आवाजों में, नया अंदाज फिल्म के गाने को ओपी नैयर ने धुन बनाई थी, जानिसार अख्तर ने इस गाने को लिखा था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अनजान के शब्दों को, संगीत में प्रिया है राहुल देव बर्मन ने, आवाजें किशोर कुमार और सलमा आगा की, फिल्म है ऊंचे लोग।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

महेंद्र कपूर और साथियों को आप सुन रहे थे पेंटर बाबू फिल्म के इस गाने में। गीतकार थे मनोज कुमार, संगीतकार थे उत्तम सिंह। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। श्रोताओं, कार्यक्रम सूर्यामिनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बिहाग, अलाप और रचना धमरताल में निबद्ध है। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित रमाकांत मपेशकर।

पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बिहाग। अभी आप सुन रहे थे, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने वाले हैं कोचीपल में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।